मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1179 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। श्रोताओं नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत

तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम। आरंभ समूह स्वर में मातृवंदना से, रचना गुणसागर सत्यार्थी की है।

आकाशवाणी रीवा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम। पंडित जसराज के स्वर में प्रस्तुत है ये भजन।

आलोक गांगुली के गाय इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। किसान भाई कृषि संकेत में सुने कद्दू।

0: संवर्गीय सब्जियों में रोग प्रबंधन विषय पर जानकारी।
1: किसान भाइलो, रबी के फसल के बाद खेत खाली हो जात हां, तो ऐसने समय में ग्रीष्मकालीन कद्दू वर्गी सब्जी लगाई के निकहा आमदनी कमावा जा सकत है। तो किसान भाइन के चाही कि जऊ खेत खाली हां ओमा सब्जी के खेती करा। कद्दू वर्गी सब्जी गर्मी के मौसम में तैयार होए वाली सब्जी आए। अधिकांश सब्जी या तो गर्मी के ऋतु में आकी ठंडी में तैयार की जाती। गर्मी के मौसम में हरी सब्जी के कमी रहा थी, यहीं से ऐसने समय में कद्दू बरगी सब्जी के बड़ा महातिम है। गर्मी के मौसम में एकर पैदावार बहुत ज्यादा होती। आ किसानन का कम समय में आ कम खर्चा में अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती। आ जऊ खेत गर्मी के मौसम में खाली पड़े रहा था ओखर उपयोग हो जात है। दूसर सब्जी या समय में कम उपलब्ध हो पावा थी, यहीं से बाजार में निकहा भाव मिल जात है। आ किसानन का कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करे से निकहा लाभ मिलत है। ग्रीष्मकालीन कद्दू वर्गीय सब्जियन में कद्दू, करेला, लौकी, ककड़ी, तरुया, परवल, खीरा वगैरह मुख्य तौर में लगावा जात है। पर हमार किसान भाइन का यह बात के ध्यान रखे चाहिए कि कद्दू वर्गीय सब्जियन में कीट व्याधि लागा था जो की उत्पादन का प्रभावित करा था। अजब मनई ध्यान न दी तो सगली फसल घाल नष्ट हो जाती। यहीं से किसान भाइन का चाही कि कीट व्याधिन के उचित समय में प्रबंध जरूर करें जौने फसल का नुकसान न हो पावे। काहे से कद्दू वर्गी फसलन में मेर मेर के रोग व्याध लागत। यहीं से हमका पांचन का रोग व्याध के प्रति सावधानी बरते चाही। जौने खेत में सब्जी लगाए हैं ओखर देख रेख करत रहे। जो कौनो मेर के रोग व्याध दिखाए त ओखर नष्ट करे के निता दवाई के छिड़काव करे। कद्दू वर्गी सब्जियन में जो प्रमुख रोग लागा था ओके बारे में अपना पांचन का जनबही दे रहे हैं। जैसन की एक ठे रोग है जेखा छाछिया आकी अस्थिता रोग के नाम से जाना जात है। यह रोग एरिसाइफी या इस्फेरियो थीका नामक फफूंद से होत है। एक ही वजह से कद्दू वर्गी सब्जियन की बेल आपत्तियन में अधिक प्रकोप हो के कारण डंठल में जो फल लगे रहा था उमा सफेद रंग के चूण जमा हो जात है। बेल के बढ़वा रुक जाती, पत्ती झुराय लागा थी। अजू फल लगे रहा था उ कमजोर हो जात। एक ही साथ ही साथ पैदावार में घा लेकर असर पड़त है। यह रोग मुख्य रूप में हवा द्वारा एक स्थान से दूसर स्थान तक फैलत जात है। एकर रोकथाम करे के निता केराथेन एलसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाए के छिड़काव करे चाहिए। आप सत्ता पड़े तो 15 दिन के आंतर दे के छिड़काव करत रह चाहिए। दूसर दवा के उपयोग कर सकी थे जैसन की गंधक चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से भुरकाव कई के रोका जा सकत है। किसान भाईलो ऐसा तुलसीता आकी मृद रोमिल असिता रोग होत है। यह रोग फफूंद से फैलत है। एक प्रकोप से कद्दू वर्गी सब्जियन के जो होती है ओके निचली सतह में फफूंद जमा हो जाती। अजू ऊपर के सतह होती उमा पियर पियर धब्बा बन जात है। एक वजह से खीरा तरुया खरबूजा का अधिक नुकसान हो। एक रोकथाम करे के निता जमने बेल में अधिक रोग लगा हो ओखा काट के डायथेन जेड 78 अकी मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोर के 10 दिन के आंतर में छिड़काव करे चाहिए। एक निता दूसरा दवाई के उपयोग कर सकी थे वह आए ब्लाइटॉक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोर के छिड़काव करे था तुलसीता आकी मृद रोमिल असिता रोग से निजात पावा जा सकत है। किसान भाईलो कद्दू वर्गी सब्जियन में रोग लागत है। झुलसा रोग कोलिटोट्राइम लेजिनेरियम नामक फफूंद से फैलत है। यह रोग मुख्य तौर में खरबूजा लौकी खीरा का अधिक हानि पहुंचावत है। एक ही वजह से पर्ण सिरा में धब्बा पड़ जात है जो की बाद में बड़ा रूप धारण कर लेत है। एकर रंग भूरा आ कोणी आकार के होत है। रोग ग्रस्त पत्ती झुराय लागत ही और धीरे धीरे यह रोग के प्रभाव फल में घाल पड़े लागत है। एकर रोकथाम करे के निता थायरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज आकि एग्रोसान जीएन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके बुवाई करे चाहिए। रोग के लक्षण जब दिखाई दे ता थायरम 2 किलोग्राम प्रति हेक्टर आकि कैप्टान 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर लाई के छिड़काव कई दे आ 15 दिन के आंतर दे के छिड़काव करत रह चाहिए।

किसान भाई अभी कृषि संकेत में सुन रहे थे कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोग प्रबंधन विषय पर जानकारी। ये आकाशवाणी करीवा केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस से पाठ।

श्री राम के हाथों जब पल भर में शिवजी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हुआया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे, किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिक पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।

अभी आप रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। गायक स्वर ए हरिहरण का था। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज सवेरे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम संग्रहालय से, इसका समय होगा सुबह 9:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे नाटक अधर में फैसला, लेखक हरीश धवन और प्रस्तुति डॉक्टर कृष्णपाल सिंह की होगी, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। चौपाल में शाम 7:21 पर नियमित चर्चा के अलावा आप सुनेंगे मौसम पूर्वानुमान, लोकगीत और अपना चौका। सुगम संगीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर जश्न समा, कव्वालियों पर आधारित सुगम संगीत, समय होगा सुबह 10:05 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 7:20 पर कार्यक्रम संगीत प्रभा में और सुबह 8:30 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
0: 8700014242। सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लहड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का करेंगे निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और 10वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप आज से शुरू। पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। वे इस दौरान देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी एनडीए के 198वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से लखपति दीदियों की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने, युवाओं के कौशल विकास और जल संरक्षण पर जोर देने का आह्वान किया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों की साझी भागीदारी को अनिवार्य बताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल रात इंदौर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए विदेशी प्रतिनिधियों के सम्मान में भव्य रात्रिभोज का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रदेश की लोक कला, आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विविधता पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
1: यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर अलग अलग सभी देशों के साथ संबंध बनाते हुए एक दूसरे की अनुकूलता का लाभ ले, ऐसे समय में कृषि सेक्टर हमारा, खासकर एग्रीकल्चर ईयर हमने डिक्लेयर किया। कृषि मंत्रियों का और कृषि से जुड़े हुए विद्वानों का एक बड़ा सम्मेलन है। कृषि एक तरह से व्यक्ति को जोड़ने का सबसे उत्कृष्ट माध्यम है। मैं सभी मंत्रियों का, राजनयिकों का, राजदूतों का सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को सुबह 6:15 पर आयोजित होने वाले विशेष ऑनलाइन योग सत्र में शामिल होने की अपील की है। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के तहत आयोजित इस 20 मिनट के सत्र में कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीयन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि प्रदेश ने केंद्र की तय समय सीमा से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा कर लिया है और अब प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना, पीएम मित्रा पार्क, कौशल विकास और नदी जोड़ो परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा की आपत्ति स्वीकार करते हुए 9 जून को उनका नामांकन रद्द कर दिया था। भाजपा का आरोप था कि नटराजन ने अपने खिलाफ दर्ज एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी थी। प्रदेश से राज्यसभा के लिए भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। कल रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने तीनों को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंपे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तथा सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। आकाशवाणी की 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला के आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस

0: इलाज का लाभ लिया है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की अध्यक्षता में कल भोपाल में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में विधेयक के प्रमुख प्रावधानों, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता, गुणवत्ता अनुसंधान और नियामकीय सुधारों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मंत्री श्री परमार ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। आज 12 जून को बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर बच्ची की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। टीकमगढ़ जिले के अस्तोन गांव में कल 3 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिद्धसागर तालाब में नहाने के दौरान तीनों बच्चे गहरे पानी में जा फंसे। मृतकों में 12 वर्षीय प्रिंस अहिरवार और 13-13 वर्षीय दीपेश व राज अहिरवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए तीनों परिवारों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश के युवा अजय अहिरवार ने इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन में ब्रिक लेइंग स्किल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उनका चयन सितंबर 2026 में शंघाई में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन और जून में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ग्लोबल स्किल चैलेंज के लिए भी किया गया है। राज्य कौशल विकास बोर्ड ने उनकी तैयारी के लिए विशेष वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा 2026 का परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.mponline.gov.in पर रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे या अपने अंक सुधारना चाहते थे। मंगोलिया के 10 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवास के बाद भगवान बुद्ध के परम शिष्यों सारिपुत्र और महामौत गलायन के पवित्र अवशेष कल भोपाल के राजा भोज विमानतल पहुंचे। मंगोलिया की राजधानी उलान बातार के गंदन मठ में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इन अवशेषों के दर्शन किए। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 3 से 4 दिन की देरी से आएगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दक्षिणी जिलों में मानसून 17-18 जून को दस्तक देगा और अगले 10 से 15 दिन में पूरे प्रदेश को कवर करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि का अनुमान है, जबकि भोपाल सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में कल NRLM आजीविका भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मास्टर वॉलंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आगरमालवा में 40 दिवसीय योग अभियान चल रहा है, जिसके तहत योग के महत्व, स्वस्थ जीवन शैली और नियमित योगाभ्यास के लाभों की जानकारी दी जा रही है। खंडवा में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए 6, 7 और 8 जुलाई को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। ITI इंदौर में एक निजी कंपनी ने तकनीशियन के 50 पदों के लिए युवाओं का चयन किया और केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद दुर्गादास उइके ने बैतूल में 18 जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम आध्यात्मिक जागृति से जनजाति समाज का सशक्तिकरण की तैयारियों का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर। देहरादून में NDA की पासिंग आउट परेड का करेंगे निरीक्षण। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और 10वां ICC महिला T20 विश्व कप आज से शुरू। पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत प्रभा। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं शिव महिमा फिल्म के गीत से। गायक स्वर अनुराधा पौडवाल के, गीत नक्श लायलपुरी का और संगीत अरुण पौडवाल का है।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अभी आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत प्रभा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 7:30 होने को है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, and account recovery systems. We have more from our correspondent.
1: The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms, or phone calls. They collect facial data of victims, sometimes by convincing them to perform simple actions such as blinking, turning their head, or speaking on camera. The government has advised financial institutions, including fintech companies, to strengthen deepfake detection mechanisms and enhance customer onboarding systems. The individuals have also been urged to secure their biometric data, remain alert to suspicious login attempts, and regularly monitor email or SMS notifications related to financial activities. Citizens are also advised to report any suspicious financial transactions immediately through the National Cybercrime Reporting Portal. With Dipendra Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं और बदलाव भी ला रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की है। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणाम को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने दोहराया कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रहित से प्रेरित होते हैं और क्रय सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं।
0: US President Donald Trump says he has called off new military strikes on Iran hours after threatening to escalate the war by seizing control of country's oil industry. In a social media post, Mr. Trump said he made the move based on the fact that discussions with Iran have been brought to the highest level of Iranian leadership and approved. The announcement came after 2 days of back-and-forth attacks between the US and Iran had threatened to pushed the West Asia region closer to the resumption of a full-scale war. Trump, on multiple occasions over the last several weeks, has claimed that the warring parties have been on the cusp of a deal without anything coming to fruition. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin today, with host England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston, Birmingham. The month-long tournament will be hosted across England and Wales, with the final set to take place on 5th of next month at the iconic Lord's Cricket Ground. Indian women's team will start their campaign against arch rivals Pakistan on Sunday. Harmanpreet Kaur-led Indian women's team will be looking to create history as they aim for their first T20 World Cup title. For the first time in the tournament's history, 12 teams will compete with 33 matches scheduled across 7 venues, making it the biggest edition of the ICC Women's T20 World Cup to date.
2: उधर मैक्सिको सिटी में कल रात फीफा विश्व कप का भव्य समारोह के साथ शुभारंभ हुआ। एस्टेका स्टेडियम में खेले गए उद्घाटन मैच में सह मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से मात दी। मैक्सिको के लिए जूलियन किनोन्स ने 9वें मिनट में पहला गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। बाद में राउल जिमनेज ने 67वें मिनट में दूसरा गोल कर मैक्सिको की बढ़त को 2-0 में तब्दील कर दिया। मैच के दौरान 3 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाए गए, जिससे मैक्सिको के 10 और दक्षिण अफ्रीका के 9 खिलाड़ी मैदान पर रह गए। ग्रुप ए का ये मुकाबला इतिहास के सबसे बड़े विश्व कप की शुरुआत है, जिसमें 48 टीम शामिल हो रही हैं। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में 1 महीने तक चलने वाले इस फुटबॉल विश्व कप में 104 मैच खेले जाने हैं। श्रोताओं, रुक करते हैं महानगरों की खबरों का। इस कड़ी में पहले बात चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की।
0: Yes, Mukesh, starting with news from Chennai. The 16-kilometre Velachery Thambaram High Road is set to be renamed after Major Mukund Varadarajan, the Indian Army officer who was killed in action and posthumously awarded the Ashok Chakra, the country's highest peacetime gallantry honour. The Thambaram Corporation Council approved a resolution to name the arterial road Major Mukund Varadarajan in recognition of his sacrifice. The proposal was taken up following the approval.

0: सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस अवसर पर परवेश साहिब सिंह ने कहा कि जन कल्याण शिविरों का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र नागरिक को किसी योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह शिविर केवल योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं है बल्कि जनता के साथ सीधे संवाद और समस्याओं के समाधान का भी एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने निकटतम जन कल्याण शिविर में पहुंचकर केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्राप्त करें तथा उनका अधिकतम लाभ उठाएं।
1: महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। मुंबई में राज्य परिवहन विभाग की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री सरनाईक ने कहा कि भत्ता 53% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते में भविष्य में होने वाली कोई भी वृद्धि तुरंत निगम के कर्मचारियों को भी दी जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। श्री सरनाईक ने कहा कि सड़क परिवहन निगम बेड़े में अब तक लगभग 3,000 नई बसें जोड़ी जा चुकी हैं और वर्ष 2035 तक पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भारणे ने नागरिकों से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे कृषि मित्र भर्ती संबंधी फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी ऐसे विज्ञापनों के झांसे में नहीं आना चाहिए और ना ही इसके लिए कोई भुगतान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भर्ती संबंधी कोई भी घोषणा केवल आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से ही जारी की जाएगी। अब चलते हैं कोलकाता की तरफ। तो राज्य सरकार ने कोलकाता में 20 जून को पूरे राज्य भर में पश्चिम बंगाल दिवस मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी शिक्षण संस्थानों और जिला मुख्यालयों में ये कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। तारकेश्वर को मुख्य कार्यक्रम स्थल के रूप में चुना गया है क्योंकि यहाँ पर ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बंगाल के इतिहास और बंगाल के विभाजन के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और सुभद्रा के साथ। और अब जानते हैं कि आज महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। इधर दिल्ली में कल शाम से ही तेज़ हवाएं चल रही हैं और हल्की हल्की बारिश भी कहीं कहीं हुई है। जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में कविता से ही जिक्र किया था कि बारिश देश के अलग अलग हिस्सों में भी हो रही है और इसी के साथ दिल्ली में भी ये दौर जारी रहा। शहर में न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो आज 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रह सकता है। उधर मुंबई में आसमान साफ रहने का अनुमान है। शहर में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगर बात की जाए कलकत्ता की तो आज वहाँ आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश और आंधी आने की संभावना है। उधर न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं सुभद्रा से।
2: Yes, Chennai is expected to have a partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 29 degrees Celsius, maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 22 degrees Celsius, the maximum will be around 31 degrees Celsius. Hyderabad is also expected to have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The temperature will hover between a minimum of 27 degrees Celsius and a maximum of 38 degrees Celsius. So we'll wait for the rain, and meanwhile, there is a very important, it's a day today is a very important, right? Gee. This is in regard to children. John F. Kennedy once said, "Children are the world's most valuable resource and its best hope for the future." Bilkul. Indeed, the little children, they hold the future in their little hands. So in order to make people understand and create awareness, the International Labour Organization of the United Nations observes the day, that is June 12, as the World Day Against Child Labour, bringing together government agencies, local authorities and international workers to raise awareness of the plight of child labourers world over. So, Mukesh, this year the World Against Child Labour's theme is Red Card to Child Labour, Fair Play for Children, Decent Work for Adults. So, friends, the campaign calls for stronger action on quality education, social protection, decent work, stronger laws and enforcement, and other measures that can eradicate the roots of child labour.
1: Ji, bilkul.
2: And Mukesh, I found this catchy electropop nursery rhyme that reminds us that every child deserves the right to play, learn, dream and grow free from exploitation and unfair work. The lyrics go like this: I want to love, I want to play, go to school and draw all day. No big jobs, no heavy bags. Let me be kind, hooray, sing and dance and smile today. Every child needs love and care. We all matter everywhere. A powerful child labor

0: जी श्रोताओं, बिल्कुल जैसा कि अभी आप ये अंग्रेजी की कविता सुन रहे थे, कुछ इसी कड़ी में अगर हम बात करें हिंदी में भी, तो बच्चों के लिए क्या खूबसूरत लिखा गया है कि जहां होनी थी बेफिक्री सी जिंदगी, वहां ठानी कमाने को अनमोल रोटी, जहां एक एक पल बिताना था खेल में, वहां झोंक दिया बचपन काम की व्यस्तता में, जिन हाथों में कलम थी पकड़ानी, वहां इन्होंने पकड़ा दी जीवन की अनगिनत परेशानी, जहां दुलार के स्वर पड़ने थे कानों में, वहां हर ओर थी डांट डपट की पुकारें, जहां बालपन में करनी थी मासूम गलतियां, वहां सुनी अनजानों की कड़वी बोलियां, जहां अनगिनत स्वप्न सजाने थे आंखों में, वहां दिखा मुश्किलों का सैलाब रात के अंधेरों में, कर्म जो इन नन्हे हाथों से करवाए, वो दूर खड़ा क्यों मुस्काए, नहीं चाहिए इन नन्हे हाथों की कमाई, जो छीन लेती है बचपन की परछाई, छोटे से बचपन के ये कुछ सुनहरे पल, जी लेने दो इन्हें मस्ती में निश्चल, जी लेने दो इन्हें मस्ती में निश्चल। तो कुछ इसी तरह से इस साल भी बाल श्रम निषेध दिवस जो है मनाया जा रहा है। इस कड़ी में अगर हम बात करें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने भी बार बार पिछले कुछ अपने भाषणों में बच्चों की, जो बच्चों से मजदूरी कराई जाती है या बच्चों पर जो अत्याचार किए जाते हैं, उनके उन्मूलन का बहुत ही व्यापकता से जिक्र किया है। तो हमें भी उन बच्चों से इस तरह के कामों को नहीं करवाना चाहिए, और उनके अंदर कहीं ना कहीं वो बालपन की भावना उनके हृदय में शेष रहने का हमें प्रयत्न करना चाहिए।
1: Yes, let the children play and now let's get to the history of the day. 1550, King Gustav I of Sweden founded the city of Helsinki. The city, which is currently the capital of Finland, was part of Sweden at that time. And 1665 this day, New Amsterdam legally becomes an English colony, renamed New York after English Duke of York. And 1817, the earliest form of bicycle, the dandy horse, was driven by inventor Carl von Drais. And 1898 this day, Philippines declared its independence from Spain. And 1903, Niagara Falls, Ontario, was incorporated as a city. And also today marks the Independence Day in Philippines and Russia. And what about you, Mukesh? Anything else you have?
0: जी बिल्कुल, वर्ष 1994 में दुनिया के सबसे बड़े ट्विनजेट विमान बोइंग 777 ने पहली बार आज ही की तारीख को उड़ान भरी थी। इसके बाद वर्ष 2001 में सीमा मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश की वार्ता भी आज ही की तारीख को शुरू हुई थी। इसके 7 बरस बाद यानी कि वर्ष 2008 में 10वें ओसियाना सिनेफेन फिल्म समारोह में प्रख्यात फिल्म निदेशक मृणाल सेन को पुरस्कृत किया गया था।
1: एंड 2011 साइंटिस्ट पब्लिश द डिस्कवरी ऑफ व्हाट मे बी द ओल्डेस्ट artwork in the Americas, an engraving of an ice age mammoth on a fossil bone likely at least 13,000 years old.
0: और 2016 में साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब भी आज ही के दिन अपने नाम किया था। अब बात करते हैं उन जानी मानी हस्तियों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। तो आज श्रोताओं, पुण्यतिथि है सी नारायण रेड्डी की। वे ज्ञानपीठ

0: पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि थे। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने 5 दशकों से भी अधिक समय तक काव्य रचना की। अब तक उनकी 40 से भी अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं।
1: And we are going back to the year 1843. Our birth anniversary tributes go out to Sir David Gill, a Scottish astronomer known for measuring astronomical distances. And Hollywood legend Gregory Peck left us this day in the year 2003. From his very first year in Hollywood through 5 decades of making motion pictures, Gregory Peck has been to audience around the world, that quintessential Hollywood leading man, tall, dark and handsome looks, complemented by an overwhelming sense of moral and physical strength. Peck received 4 Oscar nominations within 6 years and finally winning with his masterpiece film To Kill a Mockingbird in 1962. And today is the birthday of Metro Man E. Sridharan, a retired officer of the Indian Engineering Service and advisor to several metro projects in India. Besides this, he is a member of the United Nations High-Level Advisory Group on Sustainable Transport. And of course, he has received numerous national and international awards for his work.
0: श्रोताओं, भी हमने बात की थी इससे कुछ पहले सी नारायण रेड्डी की, तो उन्होंने फिल्मों में भी काफ़ी नाम कमाया। 1962 में उन्होंने फिल्मों में गाने लिखना शुरू किया। पहली फिल्म मिली उन्हें गुलबे कावली का था। इस फिल्म के साथ वो मशहूर हो गए। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

और आज ही पुण्यतिथि है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे की। वे लोकप्रिय मराठी लेखक, नाटककार, हास्यकार, अभिनेता, कथाकार और पटकथाकार, फिल्म निर्देशक, संगीतकार और गायक थे। वे दूरदर्शन से इसकी स्थापना के समय से ही जुड़े रहे। पीएल देशपांडे को पुल देशपांडे के नाम से भी जाना जाता था। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे ऐसे शख्स थे जिन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू लिया था। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, महाराष्ट्र भूषण, कालिदास आदि अनेकों सम्मानों से नवाजा गया। आइए सुनते हैं उनकी पहली फिल्म कुबेर का ये मराठी गीत।

आज श्रोताओं जयंती है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोकगीत भरतरी गायिका सुरुजुबाई खांडे की। उन्हें 1986-87 में सोवियत रूस में हुए भारत महोत्सव में हिस्सा बनने का मौका मिला था। आइए सुनते हैं उनकी गायकी का ये अंश।

0: छत्तीसगढ़ सरकार से उन्हें दाऊ रामचंद्र देशमुख और स्वर्गीय देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार भी मिला है। इन्हें सबसे पहले रत्नपुर मेले में गायन का मौका मिला। इसके बाद मध्य प्रदेश आदिवासी लोक सेवा कला परिषद ने उनके इस हुनर को पहचाना और उन्हें 1986-87 में सोवियत रूस में हुए भारत महोत्सव में गाने का मौका दिया। और श्रोताओं, आज ही के दिन हिंदी की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार गीतांजलि श्री का भी जन्मदिन है। हिंदी की वो ऐसी पहली लेखिका हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए मुकेश और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
1: Stay tuned for coming up now is Samata Prabhat Hindi News Bulletin followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in, friends. Have a great day. Namaskar. Namaskar.

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: अब सिर्फ एक MOU से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
5: We signed this year a free trade agreement with Europe.
6: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
7: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता

0: कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका के

0: मेघालय तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding, MOU,

विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे हंसी तो फंसी फिल्म का गीत। आवाजें थीं चिन्मयी श्रीपदा और शेखर रवजियानी की।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आकाशवाणी रीवा से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। सोनू निगम और सुनिधि चौहान की युगल सुर में आइए सुनते हैं फना फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

सलीम सुलेमान के संगीत निर्देशन में आइए सुनते हैं जयदीप साहनी का लिखा गीत, युगल स्वर सोनू निगम और श्रेया घोषाल के। फिल्म का नाम है आजा नचले।

राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर के युगल स्वर में आइए सुनते हैं झूम बराबर झूम फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज में आइए सुनते हैं जब वी मेट फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत प्रीतम का है।

आकाशवाणी रीवा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में आइए सुनते हैं रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं जयदीप सानी ने और संगीत सलीम सुलेमान का है।

आकाशवाणी रीवा से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। शान की आवाज में आइए सुनते हैं सांवरिया फिल्म का गीत। समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है मोंटी सिंह ने।

जावेद अली और सोनू निगम की आवाज़ में आइए सुनते हैं गजनी फिल्म का गीत। प्रसून जोशी के लिखे गीत की धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

0: श्रेया घोषाल और विशाल भरद्वाज के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे ओमकारा फिल्म का गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नाटक अधर में फैसला, लेखक हरीश धवन और प्रस्तुति डॉक्टर कृष्णपाल सिंह की है।
1: प्रस्तुत है समन्वित नाटक अधर में फैसला, लेखक हरीश धवन, परिकल्पना विजयनंद दुबे, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर कृष्णपाल सिंह।
2: Belated happy marriage anniversary, Anu Bhabhi. Lori Vidya कहाँ है? आज की पार्टी के तो वही जान है। भाई तुम्हें क्या अजीब सहयोग है ना? कल की डेट पर आप लोगों की मैरिज हुई और आज की डेट पर बेबी वॉज बॉर्न। ये भूपेश कहाँ है, नजर नहीं आ रहा।
3: देवू प्लीज डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। मैं जानती हूँ तुम्हारे पति पत्नी के बीच के संबंधों को और कितनी शानदार मैरिज लाइफ तुम जी रहे हो, ये भी किसी

0: छिपा नहीं है।
1: अरे तुम तो नाराज हो गई अनु भाभी। अरे भाई मैं तो बस।
0: चुप करो अब।
1: क्या चुप करूं? यहाँ मौजूद लोगों की बातें या भूपेश जो तुम्हारे लिए कहता है वो? अरे मैं तो भूपेश के खिलाफ तुम्हारे फेवर में हूँ आदरणीय।
0: मैंने नियुक्त नहीं किया है तुम्हें अपने फेवर के लिए। प्लीज लीव मी अलोन।
1: लो यहाँ हमदर्दी भी करो तो बुरे। ओ बेटर प्यारे, ग्लास में कोका कोला की जगह कुछ और हो तो इधर ला, शरीर में कुछ गर्मी आए। ये तो चिल हुआ जा रहा है इनकी फटकार को सुनकर।
2: नमस्ते भाभी, ये लोरी कहाँ है? आहा वहाँ है वो लोरी बिटिया। आजा आजा आजा चाचा की गोद में। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये डांसिंग डाल तुझे पसंद थी ना?
0: भूपेश कहाँ है चंद्रकांत?
2: वो भाभी क्या है कि
0: मैं सब समझती हूँ। तुमने भूपेश की कमियों पर हमेशा पर्दा डाला है। तुम यही कहोगे ना कि उसके आर्ट का कोई कदरदान नहीं मिला। लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ उसका कमर्शियल मार्केट। वो जो बकवास पेंटिंग बनाता है ना, कोई ग्राहक नहीं मिला होगा उसका।
2: भाभी ऐसा नहीं है।
0: क्या ऐसा नहीं है?
2: बातचीत चल रही है, बस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए।
0: क्या बातचीत चल रही है? समय के हिसाब से उसे नहीं चलना है। किसी के एडवाइस उसे नहीं माननी। जो समय के हिसाब से नहीं चलता ना, उसके काम को कोई नहीं पूछता। इस दुनिया में या तो नाम बिकता है या काम।
2: भूपेश का अपना काम अच्छा है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। रही बात नाम की, तो वो भी हो जाएगा धीरे धीरे।
0: बैठे बैठे नहीं हो जाएगा। अपने काम की मार्केटिंग करनी पड़ती है, बेहतर प्रबंधन करना पड़ता है। जिसको सीखने में उसे परहेज है। थोथी वाहवाही से जीवन नहीं चलता।
2: भूपेश आज के मार्केटिंग के तौर तरीकों को मक्कारी और चापलूसी मानता है, इसलिए ऐसा।
0: क्या इसलिए? इन आदर्शों को लेकर घूमने से हो चुका उसका नाम।
2: तो क्या भूपेश अपने अंदर के चित्रकार को मार डाले?
0: नहीं, वो मुझे मार डाले, लोरी को मार डाले।
2: अनु भाभी कंट्रोल योर सेल्फ, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। यहाँ मौजूद लोगों में कई ऐसे हैं जो मजे ले रहे हैं।
0: तो क्या करूँ मैं? हाँ क्या करूँ मैं? जब उसे ही परवाह नहीं तो मैं क्यों अकेली फिक्र में घुली जाऊँ?
2: इस विषय पर बाद में बात की जाएगी भूपेश से। अभी तो चलिए केक काटने की तैयारी की जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, भूपेश ने मोबाइल पर बताया है कि वो एक एग्जीबिशन में व्यस्त है, इसलिए पहुंचने में शायद अधिक देर हो जाए। ऐसे में और देर करना उचित नहीं है, तो आइए लोरी बिटिया को बर्थडे विश किया जाए। आइए सभी, प्लीज प्लीज आइए। भाई साहब आप भी आइए। आइए आइए। हाँ हाँ आइए, इधर खड़े हो ऐसे। अजा लोरी बेटा ये ले चाकू और ये रहा केक। आइए भाभी लीजिए केक कटवाइए बिटिया से।

0: ज्यादा ममता उड़ेलने का नाटक बंद करो और सोने दो। क्यों मेरी भी नींद खराब करने पे तुले हो तुम?
1: अरे तुम जाग रही थी, मुझे तो लगा कि चैन की नींद सो रही हो।

0: जो तनाव देते हो उसके बाद भी समझते हो कि कोई चैन की नींद सो सकता है।
1: क्या तनाव दिया है मैंने? तुम न उठती तो मैं भी सो जाता। तुमसे ये भी नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दो।
0: तुम क्या समझते हो मैं खाकर सो रही हूँ?
1: क्यों, तुमने क्यों नहीं?
0: भूपेश प्लीज, मैं बहुत अपमान सह चुकी हूँ। तुम्हें मालूम था कि आज दो दो ओकेजन को लेकर घर पर पार्टी है, पर तुम्हें नहीं आना था और तुम नहीं आए। मुझे क्या क्या फिक्रें सुनने को मिले हैं, पर तुम्हें से क्या?
1: मेरी बात तो
0: प्लीज प्लीज प्लीज।
1: क्यों शोर मचा रही हो तुम अनु? और शोर मचाकर साबित क्या करना चाहती हो?
0: मुझे कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो स्थितियां निर्मित कर रहे हो वही पर्याप्त है इसके लिए।
1: शोर मचाकर जिन्हें तुम सुनाना चाहती हो वो भी तो जरा सुने कि क्या स्थितियां निर्मित की है मैंने।
0: मैं चुप भी रहूंगी तो इससे कुछ छुपने वाला नहीं है। 3 महीने से दूध वाले का पैसा नहीं दिया गया। हर बार राशन घर में अलग अलग दुकानों से उधार आ रहा है। पेपर वाले का बाकी है, बाई के पैसे नहीं दिए गए। आखिर क्या क्या गिनाऊं मैं तुम्हें? ये फ्लैट मुझे मेरे पापा ने खरीद कर ना दिया होता तो सड़क पर झोपड़ी बनाकर रह रहे होते तुम्हारे पुरुषार्थ से।
1: हाँ ये सही है कि तुम्हारे पापा जी की कृपा से मैं झोपड़ी में रहने वाला झोपड़ी के जगह इस शानदार महल में रह रहा हूँ।
0: महल में नहीं रह रहे तो सड़क पर भी नहीं रह रहे।
1: ठीक है, पर इसके लिए मैं तुम्हारे घर वालों का एहसान नहीं चाहता था।
0: आखिर क्यों तुम्हारे मन में मेरे घर वालों के लिए इतनी कटुता भरी है?
1: कटुता नहीं, रोष है, क्योंकि वो मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाते रहते हैं। उन्हें मेरी मदद ही करनी थी तो मेरी पेंटिंग का एग्जीबिशन लगाने में मेरी मदद करते।
0: अच्छा, इससे तुम्हारे स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचती?
1: नहीं, क्योंकि इससे मेरा आर्ट लोगों के सामने आता, मेरा नाम होता। लेकिन तुम्हारे पापा को यह गवारा नहीं था। उन्हें भय था कि इससे उनकी बेटी वापस उनके पास नहीं आएगी।
0: कितनी ओछी सोच है तुम्हारी, लेकिन इसमें तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारी परिवेश, तुम्हारी शिक्षा का ही दोष है।
1: हाँ, मेरा परिवेश मेरी शिक्षा दोषी है। तो क्या तुम्हें शादी से पहले नहीं मालूम था कि मैं एक गरीब परिवार से हूं? तुम्हें नहीं मालूम थी मेरी वर्जनाएं? तुम्हें नहीं मालूम थे मेरे आदर्श? तुम्हें नहीं मालूम थी मेरी योग्यता? सब मालूम था तुम्हें, सब बताया था मैंने।
0: तो तुम्हें नहीं मालूम थे मेरे सपने? तुम्हें नहीं मालूम था मेरे परिवार का विरोध? तुम्हें नहीं मालूम थी मेरी इच्छाएं कि शादी के बाद मैं अपने बच्चे की और अपने घर की होकर रहूंगी? फिर क्यों दिखाए थे तुमने मुझे सपने? क्यों?
1: कोई फरेब नहीं किया था मैंने तुम्हारे साथ। अब किस्मत ही साथ ना दे तो मेरा क्या दोष?
0: किस्मत को दोष देते रहना जीवन भर। तुम्हारे काम और उसे करने के तरीके को लेकर कोई तुम्हें कुछ कहे तो तुम्हारे बदन पर बिच्छू रेंगने लगते हैं।
1: जो कहते हैं उनके काम और तरीकों को मैं भी जानता हूँ, और उनकी नियत को भी।
0: तुम कहना क्या चाहते हो भाई दवे? साफ साफ कहो क्या कहना है।
1: वो नहीं जो तुम समझ रही हो।
0: मैं क्या समझ रही हूँ? हाँ, क्या समझ रही हूँ? मैं जो कुछ भी समझ रही हूँ वो मुझे सुनने को मिल रहा है। पर इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, तुम्हें तो बस अपनी महफिलें और उसमें आने वाले वो नकारा असफल बद्दे लोग ही भाते हैं।
1: अनु, देखो मेरी सर्किल को लेकर कुछ मत कहो। इसके पीछे मेरी क्या मजबूरी है तुम नहीं समझ सकती।
0: मैं नहीं समझ सकती या तुम बता नहीं सकते?
1: कुछ भी समझ लो।
0: वैसे मैं जानू तो जरा, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें ऐसे वाहियात और कमजर्फ लोगों के साथ रहना पड़ रहा है?
1: अनु, कंट्रोल योर बिहेवियर।
0: मैं सब जानती हूँ। उनके सामने मेरे बारे में तुम उल्टा सीधा बोलकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहते हो? जो मेरा सम्मान नहीं कर सकते उनके सम्मान की मुझे परवाह नहीं।
1: और ये जो मेरा रंग है ना काला, उसका भी दोषी हूँ। अपनी छोटी जाति और तुम्हारे उच्च कुल का भी दोषी मैं ही हूँ।
0: हाँ, हो तुम दोषी, क्योंकि तुम्हारी सोच दोषी है, तुम्हारे विचार दोषी है, तुम्हारा स्तर दोषी है। तुम आज भी अपने भीतर की संकीर्णता से खुद को मुक्त नहीं कर पाए।
1: सुनो, रोज रोज की इस किटकिट का कोई हल निकाल लो। तुम कुछ अपने कमिटमेंट से कंप्रोमाइज कर लो।
0: हल मैंने सोच लिया है, और कंप्रोमाइज तो अब मैं और कुछ करूंगी ही नहीं।
1: क्या हल सोचा है तुमने?

0: आखिर बताओगी क्या सोचा है तुमने? क्या वही जो तुम्हारे मम्मी डैडी चाहते हैं?
1: तो क्या गलत चाहते हैं? वो मेरे मम्मी डैडी हैं, कोई दुश्मन नहीं।
0: अनु प्लीज अपना भविष्य मत बिगाड़ो। हमने तय किया था कि हम कठिनाइयों में भी साथ रहेंगे, और फिर हमारे तुम्हारे बीच ये लोरी भी तो है, उसके लिए तो सोचो।
1: सोच लिया है, खूब सोच लिया है। इस माहौल से बेहतर परवरिश होगी उसकी। हेलो जी डैडी, हाँ आ गए हैं 10-15 मिनट पहले। आते ही झगड़ा कर रहे हैं।
0: मैं झगड़ा कर रहा हूँ?
1: शट अप, मैं अपने डैडी से बात कर रही हूँ, मुंह बंद रखो अपना। जी डैडी, कुछ नहीं, बस ठीक हूँ मैं। नहीं, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप अभी किसी को गाड़ी लेकर भेज सकते हो तो भेज दीजिए। मामा तो नहीं परेशान होंगी ना? नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, इतनी हिम्मत वो नहीं करेंगे। हाँ हाँ, लोरी को लेकर आऊंगी, आप गाड़ी भेज दीजिए।
0: देखो अनु, तुम जल्दबाजी में ये सब कर रही हो। I am sorry, तुम कह लो मुझे जो तुम कहना चाहो, पर प्लीज ये ना करो।
1: मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज लीव मी अलोन।
0: देखो मैं तुम्हें लोरी को लेकर नहीं जाने दूंगा।
1: अच्छा, तुम रोकोगे मुझे लोरी को ले जाने से? सुनो, कोई तमाशा नहीं चाहते हो तो ऐसा कुछ सोचना भी नहीं।
0: मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा।
1: हटो मेरे सामने से, सुना नहीं तुमने? हटो मैं कहती हूँ, तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ। चल उठ बेटा, तेरी किस्मत में तेरे बाप का दाना यहीं तक लिखा था।
0: अनु प्लीज ये जुल्म मुझ पर ना करो, रुक जाओ प्लीज। सोचो तो, मैं लोरी के बिना कैसे रह पाऊंगा? इसे तो मेरे पास।
2: मैम साहब, इसे मुझे दे दीजिए।
3: मामा, नेक्स्ट वीक मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन है, मैं चाहती हूँ बाबा उसमें आए।
1: क्यों, तेरे बाबा क्या फंक्शन के चीफ गेस्ट बनाए गए हैं?
3: मामा, मैं क्लासिकल सोलो डांस कर रही हूँ उसमें। मेरे बाबा मेरे लिए सबसे अच्छे क्रिटिक हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बाबा आए। मैं उन्हें इन्फॉर्म करना चाहती हूँ।
1: कहाँ इन्फॉर्म करेगी?
3: जहाँ वो रहते हैं वहाँ जाकर। आप मुझे ड्राइवर के साथ गाड़ी में भेजिए ना।
4: AIMD केवल
1: मुझे नहीं मालूम तेरे बाबा कहाँ रहते हैं।
5: प्रजा सेवल लो नहीं का मानव केंद्र का AI
1: लुपेर दा मेरे उनसे बात नहीं होती।
5: मदलुपेर AI
3: नहीं यला वालों से टेंस कुंटा रहा। प्रजा सेवल लो
5: नहीं का
1: तेरे नाना को ये पसंद नहीं।
3: आपको पता मालूम नहीं, नाना को पसंद नहीं कि मैं अपने बाबा का कहीं से पता मालूम करूं। आखिर मेरा दोष क्या है? मैं अपने बाबा से पिछले 2 साल से मिली नहीं। मुझ पर तो नहीं, मैं किसी भी
4: వాతావరణ అంచనా నుండి పంట రక్షణ వరకు AI రైతులకు తోడ్పడుతూ ఒక్కో అడుగు
3: వేసి
1: భూల్తీ జా రీ హో అప్నే సే బడో సే ఐసే బాత్ కీ జాతీ హై పతా లగా రీ హూ తుమ్హారే బాబా కా పతా చల్తే హీ తుమ్హే బతా దూంగీ
5: భారత్ ఆరోగ్య
6: రోగుల సంరక్షణకు వీలు కల్పిస్తుంది పడటం ద్వారా
4: చప్చుబిట్స్ గ్లోబల్ ఇంటర్జాల్ ముందు ఒక్క క్షణం ఆలోచిద్దాం
5: క్షమాతం లేదు
1: ఇస్ దర్వే మే జో వ్యక్తి రహతా హై ఉస్కో నోటీస్ దేనా హై ఖట్ఖటాయే దర్వాజా సో రహా హోగా సోయెంగే దోపహర్ తక్ ఔర్ దోష్ దేంగే కిస్మత్ కో
0: कौन है भाई इस मशहूर चित्रकार के दरवाजे पर? अरे खोल रहा हूँ यार, दरवाजा तो सही सलामत रहने दो, वो मेरा पर्दा है। अरे क्या बात है भाई, आज से पहले मैंने तुम्हें कहीं देखा नहीं।
7: ये नोटिस है कोर्ट का, इसे लीजिए और यहाँ दस्तखत कीजिए।
0: कोर्ट का नोटिस किसने भेजा है मेरे दोस्त?

0: ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। उनके काम का एक एग्जीबिशन लगने जा रहा है। बहुत डिमांड है उनके बनाए स्कल्पचर्स की।
1: अच्छा, ये तो तूने अच्छी खबर दी है। पता है तुझे, मैं खुद भी उसके आर्ट का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ।
0: बाबा, क्या तुम मम्मा की सोच के अनुरूप खुद को चेंज नहीं कर सकते?
1: सोचा था मैंने चेंज करने को, लेकिन तब तक तुम्हारी माँ ने निर्णय ले लिया। बहुत देर हो गई मुझसे।
0: पिछले 10 सालों से आप मेरे और मम्मा के बिना रह रहे हैं। मम्मा कहती हैं आपके काम का तरीका आज भी नहीं बदला।
1: हताशा भी होती है बेटा, और क्या होगा आप खुद को बदल कर भी।
0: बाबा, मैंने कहीं पढ़ा है पॉजिटिव अप्रोच इज द की ऑफ सक्सेस।
1: अरे मेरी नन्ही बिटिया इतनी समझदार हो गई। हाँ वाह वाह। खैर अब छोड़ो ये सब बातें, मुझे ये बताओ कि तेरी मामा आप काम में लग गई हैं तो तेरी फिक्र कौन करता होगा, तेरा खाना पीना और पढ़ाई का ख्याल कौन करता होगा।
0: मम्मा करती हैं, नाना नानी करते हैं, और फिर अब तो तुम्हारा भविष्य खुद भी बड़ा हो रहा है मेरे स्वीट बाबा। अच्छा ये बताओ, तुमने फिर नाना से कुछ पैसे मांगे थे क्या?
1: नहीं, तो
0: आपसे झूठ भी नहीं बोला जाता। देखिए ना, आपका चेहरा कुछ और कह रहा है और आप कुछ और। बताइए, मांगे थे ना?
1: तुझे ये बात बताकर मेरे खिलाफ किया जाता है।
0: नहीं बाबा, उन्होंने नहीं बताया। नाना माँ को जब बता रहे थे तो मैंने सुना। ये बताओ, तुमने मांगे थे या नहीं?
1: हाँ, मांगे थे तो क्या गलत किया मैंने। अपनी ममता का गला घोटने के एवज में थोड़ा सा मुआवजा ही तो मांगता हूँ।
0: ये लो, नाना ने दिए हैं मुझे तुम्हें देने के लिए।
1: अच्छा, तो अब मेरी बेटी के मन में मेरे लिए नफरत पैदा करने का ये तरीका निकाला है तेरे नाना ने। नहीं चाहिए ये मुझे, लौटा देना उनको। मेरी बेटी की नजरों में भिखारी बनाना चाहते हैं मुझे। नहीं लूंगा मैं ये, नहीं लूंगा मैं ये पैसे।
0: बाबा, बाबा, बाबा सुनो तो।

0: चेनीलाल।
1: मिस्टर भूपेश, या तो आप नेचुरल डाइवोर्स के लिए सहमत हो जाएं, या हम यहाँ पर कुछ नए एलिगेशन लगाने पड़ेंगे और आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे।
2: आप चाहे जो एलिगेशन लगवा दें वकील साहब, मैं म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए राजी नहीं हूँ। रही बात प्रॉब्लम्स की, तो वो मैं क्या क्या फेस कर रहा हूँ इसे आप नहीं समझेंगे।
1: देखिए, अदालत का सोचना है कि आप दोनों पुनर्विचार करके साथ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये संभव है।
3: लूरी, लूरी,
4: मुमा, छोड़ी मेरा हाथ।
3: अरे लूरी, सुन तो मेरी बात। सुन, रुक, देखना।
4: मम्मा छोड़िए मेरा हाथ, छोड़ो मम्मा, वकील अंकल से बात करने दो मुझे।
1: हाँ हाँ मैडम, करने दीजिए बच्ची को अपनी बात। बोलो बेटा, क्या कहना है आपको?
4: हाँ, फिर दीजिए मेरी बात।
1: मैडम, इस तरह तो अदालती कार्रवाई लंबी खींचती चली जाएगी। या तो आप लोरी को टैकल कीजिए और उसे यहाँ अदालत में तो बिल्कुल भी ना लाया कीजिए, या फिर आप कोई और निर्णय। मैं इसमें अब क्या सलाह दूँ आपको?
3: मैं टेटी से बात करके आपको बताऊंगी। चलती हूँ मैं अब। नमस्ते।
1: नमस्ते।
3: हेलो वकील साहब, मैं अनु बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग।
5: गुड मॉर्निंग। बोलिए मैडम, क्या तय किया आपने?
3: वकील साहब, मैंने डैडी से बात की थी उस संबंध में। पहले तो वो राजी नहीं थे, लेकिन मैंने जब उन्हें लोरी के विरोध के संबंध में बताया तो उन्हें चिंता हुई।
5: देखिए मैडम, कानून अपनी तरह से काम करता है। आप माँ है, इसलिए कोर्ट बेबी को आपकी कस्टडी में ही रखेगा, लेकिन उससे बच्ची के मन में ये प्रभाव आ सकता है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है।
3: हाँ, मुझे भी लगता है कि कहीं वो रिएक्शनरी न हो जाए।
5: बिल्कुल, आप उसके बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन अपने पिता से उसका लगाव उसे विद्रोही बना सकता है और ये सबके लिए घातक होगा।
3: मैं समझ रही हूँ वकील साहब, लेकिन इसमें भूपेश का कितना सपोर्ट मिलता है इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता।
5: आप अपना कोई ईगो न पालें, तो मुझे नहीं लगता कि भूपेश की तरफ से ऐसे किसी प्रस्ताव पर असहमति होगी।
3: ऐसे कैसे कह सकते हैं आप?
5: भूपेश की आर्थिक दशा इसका एक बहुत बड़ा कारण है।
3: भूपेश के बारे में आपका ये अनुमान

0: भ्रामक ही वकील साहब।
1: चलिए माना, लेकिन कहीं से पहल तो होनी चाहिए।
0: ठीक है, मैंने तय कर लिया है कि लोरी की खुशी के लिए अपना एक कदम वापस ले लूंगी।
1: बहुत बेहतर होगा ये, और शायद इसे भूपेश भी तरक्की की राह पर चल पड़े।
0: मुझे इसकी चिंता नहीं कि वो क्या करेंगे, मैं तो बस इतना देख रही हूँ कि मेरी बेटी के भविष्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े और वो मेरे विरुद्ध न हो जाए।
1: तो ठीक है, मैं कोर्ट से केस वापस लेने के लिए पेपर्स तैयार कराकर आपके पास भिजवा दूंगा। आप दस्तखत करके मेरे ऑफिस भेज दें, बाकी की कार्रवाई मैं कर लूंगा। ओके
0: ओके, थैंक्स वकील साहब।
2: थैंक्स मामा।
3: अरे तुम कब आई बेटी?
2: जब आप वकील अंकल को फोन लगा रही थी।
3: अब तो तू खुश है ना?
2: हाँ मम्मा, आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी।
3: चल रहने दे, अब तेरी खुशी से बढ़कर मेरे अपने कोई झगड़े नहीं है बेटी। तू बस खुश रहे, मैं इतना ही चाहती हूँ।

0: अधर में फैसला। अभी आप सुन रहे थे ये समन्वित नाटक। भाग लेने वाले कलाकार थे राजा जी राव, रवि कुमार शुक्ला, शैलेंद्र द्विवेदी, कमरुनिसा खान, ऋचा पांडे, संतोष गौतम और चंद्रशेखर पांडे। इस समन्वित नाटक के लेखक थे हरीश धवन, परिकल्पना विजयनंद दुबे की थी और प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर कृष्णपाल सिंह। ये समन्वित नाटक आकाशवाणी रीवा पर तैयार किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक अधर में फैसला। लेखक हरीश धवन और प्रस्तुति डॉक्टर कृष्णपाल सिंह की थी। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

पटना जिले में विश्व पर्यावरण दिवस पर बीते दिनों एक पेड़ मां के नाम 2.0 महाअभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण किया गया। पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने अटल पार्क में और पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने बनौली में पौधे लगाए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी की उपस्थिति में 150 फलदार और छायादार पौधे रोपे गए। पन्ना जिले की शाहनगर ग्राम पंचायत प्रदेश की नंबर 1 स्वावलंबी पंचायत बन गई है। ये पंचायत जल कर, स्वच्छता कर, संपत्ति कर और बाजार बैठकी कर से हर महीने करीब 3 लाख रुपए यानी सालाना 36 लाख रुपए का राजस्व अर्जित कर रही है। पंचायत ने मुख्य बाजार में डिवाइडर युक्त डामर सड़क और सुंदर लाइटिंग भी कराई है। तमोली ग्राम वन समिति के अध्यक्ष अजय चौरसिया की पक्षी संरक्षण की अनूठी पहल पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गई है। उन्होंने सूखी लौकी और प्लाईवुड से प्राकृतिक पक्षी घर तैयार किए हैं, जिसमें आज सैकड़ों पक्षी बसेरा कर रहे हैं। उनकी इस कोशिश को पर्यावरण प्रेमियों से खूब सराहना मिल रही है। शाहनगर तहसील के सामने कांग्रेस पार्टी ने किसानों की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बीते दिनों किया। तेंदुघाट बांध सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के 4 गांवों के किसानों को 8 साल से मुआवजा न मिलने पर यह प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार ने बताया कि भू अर्जन की फाइल जिला मुख्यालय भेज दी गई है और जल्द ही मुआवजा वितरित किया जाएगा। अजयगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत बिहरपुरवा में मनरेगा कुआं निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत के मामले में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरपंच और ठेकेदार सहित 3 जिम्मेदारों पर FIR दर्ज की है। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, सांसद वीडी शर्मा और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधवाया। भाजपा नेता संजय नागायच को मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कारपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुनौर विधायक राजेश वर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अंकुर त्रिवेदी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर उषा परमार ने बीते दिनों

0: पवई क्षेत्र का दौरा कर सब जेल, नवनिर्मित सिविल अस्पताल, कस्तूरबा कन्या छात्रावास और जनजाति छात्रावास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार तलैया ने शाहनगर में सभी प्राचार्यों की आपात समीक्षा बैठक ली। उन्होंने मानसून से पहले स्कूल भवनों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था और विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने के काम को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र की प्री खरीफ वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक बीते दिनों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलगुरु प्रोफेसर प्रमोद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में किसानों को खरीफ मौसम में समन्वित खेती, धान की सीधी बुआई, जैव उर्वरकों के उपयोग और मोटे अनाज की खेती अपनाने की सलाह दी गई। विशेषज्ञों ने परंपरागत बीजों के संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया। जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, शुगर और सोनोग्राफी सहित अन्य जांचें की गयी। जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य समय पर पूरा न करने पर कलेक्टर उषा परमार ने 42 प्रगणकों और सुपरवाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिले के शासकीय कार्यालयों में एआई टूल्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज कलेक्ट्रेट स्थित ई दक्ष केंद्र में 45 शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न विभागों के इन कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी जाएगी। पन्ना जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम जश्ने समा, कव्वालियों पर आधारित हमारा सुगम संगीत का कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं जफर हुसैन खान और मुड़ौनी एंड पार्टी के आवाज में इस कव्वाली से।

0: करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये

0: आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
0: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
7: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: असलम साबरी और साथी की आवाज में पेश है ये नातिया कव्वाली।

आकाशवाणी रीवा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जश्ने समा, कव्वालियों पर आधारित सुगम संगीत का कार्यक्रम। असलम साबरी और साथी की आवाज में पेश है हामिद लखनवी का कलाम।

जफर हुसैन खान और साथी की आवाज़ में गाई इस कव्वाली के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है, दिन के 11 बजने को है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताइए।
1: नमस्ते, मैं श्री गंगा मेहरा बात करें नीमच से।
0: नमस्ते, नाम एक बार फिर बोलिएगा।
1: गंगा मेहरा।
0: गंगा मेहरा जी, कैसी हैं
1: जी? अच्छे मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। गीत संगीत का शौक रखती हैं
1: जी मैम?
0: किस तरह के गीत पसंद आते हैं आपको?
1: 90 के दशक के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं और ओल्ड भी बहुत अच्छे लगते हैं, जो ज्यादा नए होते हैं वो थोड़ा अच्छे नहीं लगते।
0: तो मतलब 90s के गीत पसंद करती हैं और जो पुराने गीत हैं वो आपको अच्छे लगते हैं। तो आज क्या फरमाइश है
1: मैम? मूवी का नाम है बेवफा सनम और गाने बोले दिल तोड़ के हस्ती हो मेरा।
0: दिल तोड़ के हस्ती हो मेरा, उदित नारायण जी का गाया हुआ गीत। तो चलिए आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का गीत, सुनिए, गुनगुनाइए और इसी तरह खुश रहिए। बहुत बहुत आभार आपने फोन किया।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मैं इंदौर से जीनत परवीन कोहिनूर कॉलोनी से बोल रही हूँ।
0: जीनत परवीन जी,
1: जी
0: क्या करती हैं आप?
1: बस घर में ही काम।
0: घर का काम करते हुए रेडियो किस तरह से साथ देता है आपका?
1: रेडियो बस साथ ही है मेरा, और क्या, गाने सुनती रहती हूँ और काम भी निपटाती रहती हूँ।
0: जी, बड़ा अच्छा लगता है ना जब घर में रेडियो गुनगुनाता रहता है और आप डूबे हुए से काम करते रहते हैं, तो काम का पता नहीं चलता कि कितना काम किया, कितना वक्त हुआ, और आप बिल्कुल आनंद के साथ समय गुजरता है ना
1: जी। अब टीवी में तो क्या बैठ कर देखना पड़ती है, रेडियो में तो गाने सुनते रहो, अपना भी काम निपटाते रहो।
0: बिल्कुल, टीवी देखते हैं तो फिर काम रोकना ही पड़ता है।
1: नीचे देर से आती हूँ, रात को 9 बजे टीवी देखती हूँ, बस 1-1.5 घंटे, फिर सो जाती हूँ 11 बजे।
0: और बाकी पूरे वक्त रेडियो चलता है
1: जी, पूरा वक्त रेडियो, सब चैनल कोई भी,
0: जी जी
1: इंदौर है, भोपाल है।
0: हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि रेडियो आपका इतना साथ देता है और आप रेडियो का इतना साथ देती हैं। कौन सा गीत सुनेंगी आज?
1: मैं वक्त पिक्चर का सुनना चाहूंगी, ए मेरी जोरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवां, ये वाला
0: तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। बहुत ही
1: अम्मी और बहनों के लिए डेडिकेट रहेगा क्योंकि वो भी सुनती है।
0: जी,
1: अम्मी
0: जी,
1: का नाम है मंसूर में रहती है, नूर भी,
0: हाँ,
1: अंजुम, गजाला, शम्मी, शाइस्ता, रुखसाना, रोशन।
0: तो चलिए, बहुत ही लोकप्रिय ये गीत है, आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: शुक्रिया मैम।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
1: कालीचरण यादव, ग्राम पंतल बरादरी से।
0: कालीचरण यादव जी कैसे हैं?
1: अच्छी है मैडम जी।
0: रेडियो किस तरह से साथ देता है आपका, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: मैं सब सुनता हूँ, ग्वालियर की आकाशवाणी की प्रोग्राम सुनता हूँ, भोपाल के सुनता हूँ।
0: अच्छा,
1: और रेडियो चल रहा है, ग्वालियर चल रहा है, मेरा उसमें नाम बनता है, मेरा हाँ नाम बनता है रेडियो में।
0: जी जी, और
1: ग्वालियर में बहुत प्राण खुदा ग्वालियर ग्रंथ।
0: अच्छा, और कौन कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, किस तरह के कार्यक्रम पसंद करते हैं?
1: मैं कार्यक्रम आपकी परमाश कार्यक्रम,
0: मतलब फिल्म संगीत में विशेष रुचि है आपकी।
1: वो वाले कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे, ग्वालियर के बंद हुए कार्यक्रम, सुबह सुबह चंदा कार्य बहुत परमात्मा।
0: जी जी, कौन सा गीत सुनवाए आज?
1: गुरा काला पिक्चर सुनवा देना, मुझे जैसा की आवाज में धीरे धीरे पूरी सुनना ले,
0: धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले।
1: जी जी, प्राणगान कहो नजरी को।
0: जी जी, तो कालीचरण यादव जी आपने हमें फोन किया, आपका गीत आप तक भेजते हैं, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: धन्यवाद मैडम,
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मेरी बहना।
0: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे
1: और
0: हैं?
1: आप कैसे हो बहना मेरी? चलो
0: हम बहुत अच्छे हैं।
1: अच्छा, प्रभु की कृपा है आपके ऊपर।
0: हाँ, हमारे कौन से भाई बोल रहे हैं?
1: मैं आपका एक भाई बोल रहा हूँ, मंदिर का पुजारी हूँ मैं,
0: जी
1: और मालेगांव से बोल रहा हूँ, तुलसीराम व्यास। पहले रिटायर हो चुका हूँ मैं, शिक्षक था पहले। अच्छा,
0: अच्छा, तो आप शिक्षक
1: रिटायर हो
0: थे?
1: चुके, मैंने पुजारी जी का काम चालू किया है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: तो क्या करूं इस उम्र में, तो मैं भगवान की सेवा ही करना मेरे लिए सर्वप्रथम है।
0: बिल्कुल। और देखिए, ईश्वर का स्मरण तो पूरे जीवन करना चाहिए, है ना?
1: मन नहीं लगता था तो मैंने मंदिर का काम चालू किया है, पुजारी का,
0: जी
1: मंदिर की
0: जी
1: सेवा कर रहा हूं मैं।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ
1: हाँ
0: ही रेडियो भी आपका साथ देता होगा,
1: हाँ
0: जाहिर सी
1: रेडियो
0: बात
1: तो
0: है।
1: मेरा बिल्कुल, मैं 1955 और 56 से सुन रहा हूँ।
0: अच्छा, तो बहुत पुराने श्रोता हुए आप हमारे।
1: हाँ पुराना रेडियो है मैडम।
0: जी जी जी जी
1: आज मेरे पिताजी भी वही सुनते थे, मेरा बालक भी वही सुनता हूँ, और मैं भी सुनता हूँ। आकाशवाणी ये आकाश में अमर है, और ये सबके दिलों में बसी है आकाशवाणी, सबके
0: बिल्कुल, सबके दिलों में बसी है।
1: दिलों में। और
0: और
1: हमारा एक नीमच में मेरा भाई है, 82 साल का, उनका नाम आरसी जैन,
0: जी जी
1: वो भी बहुत पुराने गाने के बहुत आशिक है।
0: जी जी तो देखिए,
1: तो ये गाना
0: आकाश,
1: उन्होंने मुझे दिया है फागुन का,
0: फागुन फिल्म का गीत, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: कौन परदेशी मेरा दिल ले गया।
0: एक परदेसी मेरा दिल ले गया, आशा जी का गाया हुआ गीत। तो
1: बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर है।
0: जी जी
1: मैं मंदिर में प्रार्थना आपके आकाशवाणी परिवार के लिए रोज करता हूँ, सुबह से शाम तक के।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर भाव हैं
1: मेरा
0: आपके।
1: ये आकाशवाणी एक परिवार है मेरा।
0: जी जी तो इसी तरह से आकाशवाणी से प्रेम बनाकर रखिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: जी? नमस्ते मैम, प्रणाम करता हूँ। संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से। कुछ पंक्तियाँ पेश है आप तक और सभी सुनने वाले साथियों तक।
0: जी जी।
1: कहते हैं सुबह सवेरे सूरज आता भाई पूरब में लाली फैलाता, देव प्रकाश की किरणें हमको अंधकार से दूर भगाता।
0: वाह, तो एक जो नया दिन है वो कोरा सा हमारे जीवन में आता है, प्रकाश की भाषा में आता है और ये आह्वान करता है कि अपनी जिंदगी में जो कुछ हम करें वो प्रकाशमय हो, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो संतोष,
1: चंचल और शीतल आवाज की धनी, यही कह कि मधुर आवाज की मलका, आदरणीय मैडम सुनीता सिंह जी को मेरा प्यार भरा अभिवादन ही रहेगा।
0: नमस्कार नमस्कार। तो ये बताइए कि कैसे हैं आप और कैसा है मौसम?
1: जी मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ। बताऊँ आपसे मौसम की बातें, लगातार प्री मानसून की गतिविधियाँ हमारे मध्य प्रदेश में जारी है और इस बीच हमारा जो बघेलखंड है, खास करके उमरिया और शहडोल के आसपास, यहाँ पे बादल छाए हुए हैं और हल्की सी मध्यम बारिश हो रही है और अभी हवाएं चल रही है मैडम दिन में।
0: चलिए, तो मतलब मौसम सुहाना है।
1: जी बिल्कुल मैम।
0: तो इस सुहाने से मौसम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी मैम, जब कार्यक्रम चलता है ना, कार्यक्रम फोन करने गीत सुने कार्यक्रम बहुत ही अच्छा प्रसारण जाता है। आपका जो कार्यक्रम आता है वतन कराग, इतना ऊर्जावान हमें कर देता है, खास करके जब वीर शहीदों की बातें होती है आपके कार्यक्रम के द्वारा संचालित कार्यक्रमों में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। नमस्कार भोपाल एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें ज्ञान विज्ञान की बातें होती है, साथ में विशेषज्ञ महोदय अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है और सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रोचक और मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारण होते हैं
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश
1: के माध्यम से।
0: संतोष जी, आप बहुत ध्यान से रेडियो सुनते हैं, इस बात का हमें बहुत संतोष है। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। कौन सा गीत सुनवाएं आज?
1: मूवी का नाम है धड़कन और बहुत ही प्यारा सा गाना है मैडम, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं।
0: अगर गुनगुना दें दो लाइन तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों से मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो यार आते हैं।
0: वाह, बहुत ही सुरीला आपने गाया। तो ये जो स्वर है, ये जो मिठास है, आपकी जिंदगी में बनी रहे। आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया।
1: जी मैम, प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में अपने अगले श्रोता का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, नाम बताएं।
1: नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, मैं जगत सिंह चड़ार, ग्राम पिपलिया बराई, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन से बोल रहे हैं मैडम जी।
0: जगत सिंह चड़ार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप रेडियो से जुड़ रहे हैं, इस बात की हमें खुशी है। गीत संगीत में आपकी रुचि है, जाहिर सी बात है। किस तरह के गीत पसंद करते हैं
1: जी? पुराने गाना अच्छे लगते हैं, ज्यादा पुराने तो नहीं, 19 के अच्छे लगते हैं।
0: 90s के। अच्छा, और क्या करते हैं आप?
1: मैडम जी हम बैठे ही रहते हैं, दिव्यांग है तो किराने की दुकान चला रहा है अपनी।
0: अच्छा, आपकी दुकान है और दुकान के साथ आप रेडियो भी सुनते रहते हैं। कौन सा गीत सुनवाएं आज, बताइए
1: जी? फूल और कांटे फिल्म का सुना दो, मैंने प्यार तुम्ही से किया है।
0: वाह, बहुत ही लोकप्रिय गीत है ये, मैंने प्यार तुम्ही से किया है। आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत, फिल्म का नाम है फूल और कांटे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। मैंने

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नाम बताइएगा
1: मेरा
0: अपना।
1: नाम जीनत अंसारी है, मैं महेश्वर से बोल रही हूँ।
0: जीनत अंसारी, कैसी हैं आप?
1: हाँ मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। क्या करती हैं आप?
1: मैं हैंडलूम का काम करती हूँ।
0: अच्छा, महेश्वर की जो साड़ियां हैं वो तो बहुत प्रसिद्ध
1: हाँ,
0: हैं।
1: वर्ल्ड फेमस है
0: बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध हैं, है ना? तो
1: जी।
0: आप एक विरासत को संरक्षित कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो कितने घंटे दिन में काम करना होता है?
1: मैम, घर का काम करके जो भी टाइम फ्री मिलता है उसमें कर लेते हैं।
0: अच्छा, और आपके घर में जो बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, वो भी
1: नहीं,
0: सीख रहे
1: बच्चे
0: हैं?
1: अभी छोटे हैं, वो स्कूल जाते हैं।
0: अच्छा, अभी छोटे हैं बच्चे।
1: हाँ
0: अच्छा
1: जी
0: जीनत जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि कितने दिनों के बाद आपने फोन किया है?
1: जी मैम, मैंने 1 फरवरी को लगाया था
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने तारीख बताई है, इससे हमें बहुत
1: जी,
0: सुविधा
1: मुझे
0: हो
1: याद
0: जाती
1: है। हाँ
0: है। इससे हमें बहुत सुविधा हो जाती है, अगर श्रोता हमें तारीख बता दें तो हम झट से अपना रजिस्टर पलट कर देख लेते हैं कि हाँ इस तारीख को बात हुई थी और इसके बाद बात नहीं हुई है, तो एक
1: जी
0: आसानी हो जाती है। तो हमें लगता है कि

0: आपकी बात से हमारे जो दूसरे श्रोता हैं वो भी एक प्रेरणा लेंगे और वो तारीख याद रखेंगे कि किस तारीख को पिछली बार फोन किया था। तो जीनत जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। कौन सा गीत सुनवा है बताइए?
1: मुझे तलाश मूवी का गीत सुनना है।
0: गीत के बोल,
1: प्यार बदलना जाना मौसम की तरह।
0: यार बदलना जाना मौसम की तरह, बहुत ही खूबसूरत गीत। तो चलिए आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत तलाश फिल्म का। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया, बहुत शुक्रिया।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने अगले श्रोता का हम। नमस्कार, नाम बताएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आपका रेडियो कैसा है?
1: हमारा रेडियो तो बहुत अच्छा है और 90 साल हमारे रेडियो ने जो है पूरा कर लिए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि 100 साल पूरे हों, एक शतकीय पारी पूरी हो, है ना?
1: और 150 साल पूरे हो।
0: बिल्कुल, और उसका हम जश्न मनाएं, पहले तो 100 साल का जश्न मनाएं। तो देखिए इतनी लंबी यात्रा।
1: सुनीता जी क्या है
0: जी,
1: ये रेडियो की महत्ता आज भी घटी नहीं है। देखिए इतने साधन हो गए, मोबाइल टीवी, लेकिन रेडियो अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसकी आकाशवाणी अपनी जगह क्लियर है। और आकाशवाणी से कोई भी अभी ऐसा वो नहीं है कि जो आकाशवाणी ना सुनते हो लोग।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी की एक अपनी जगह है जो बनी हुई है, और हमारा तो ये मानना है कि ये जो जगह बनी हुई है ये हमारे श्रोताओं की वजह से बनी हुई है।
1: देखिए श्रोता और आकाशवाणी
0: जी,
1: ये एक दूसरे के पूरक है।
0: हाँ,
1: आकाशवाणी है, श्रोता नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है, और श्रोता है आकाशवाणी नहीं है कोई मतलब नहीं।
0: तो चलिए ये जो एक सुंदर यात्रा हम लोग की मिली जुली सी जो चल रही है ये जारी रहे। फिलहाल हम जानना चाहते हैं कि फरमाइश क्या है आपकी।
1: जी बिल्कुल सुनीता जी, फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानियां।
0: गीत के बोल,
1: की बोल है कि आई जवानी मोदी चुनरिया सर से सर की जाए। और ये गीत हमारे प्रेमदास बाबा जी और मांगीलाल चंदेल जी और जो है दिनकर सिंह जी को और विजय कुमार पांडे हो गए और मणिराम पाल जीतन पाल जी को डेडिकेट रहेगा ये गीत।
0: अच्छा, तो कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत है। हम चाह रहे थे कि आप गुनगुना देते दो लाइन।
1: क्या बात है, तो फिर इसी गीत को बुलाऊं कि कोई बुंदेलखंडी गीत
0: नहीं? अरे आपने तो लालच ही दे दिया। तो पहले तो एक बुंदेलखंडी गीत सुनाइए, फिर ये गीत गुनगुनाइए, ताकि फिर हम गाना आपके लिए प्ले करें।
1: बुंदेलखंडी गुनगुना रहा हूँ मैं।
0: जी जी।
1: हाय बाले माँ, हाय बाले माँ, मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बाले माँ। बहुत प्यारा गीत।
0: वाह वाह वाह, बहुत ही मधुर गीत। और देखिए गर्मी की आपने बात की तो यह मौसम कह रहा है कि हाँ अब राहत होने को है, तो हम चाहते हैं कि अपनी फरमाइश भी आप गुनगुना दें, तो हम आपका गीत आप तक भेज दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई जवानी मोरी चुनरिया सर से सर की जय, इधर संभालूं गिरे उधर को नांगन सी लहरा।
0: वाह वाह,
1: कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज।
0: फूलचंद पाल जी आप बहुत ही सुरीले श्रोता हैं, सुनकर बहुत खुशी हुई हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया, आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं।

हेलो श्रोताओं, आपकी फरमाइशों ने इस महफिल को सजाया, आपके साथ ने इसे संवारा और आपकी बातों ने इसे यादगार बना दिया। समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन ये धुने, ये गीत और ये एहसास हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे फूलों के बिछड़ जाने के बाद भी उनकी खुशबू भीतर बनी ही रहती है। तो अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार

0: सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। अमेरिका के नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की यह उपलब्धि उस भरोसे और विश्वास को दिखाती है जो भारत के लोगों ने उनके नेतृत्व पर जताया है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात दिल्ली में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राणा ने निशानेबाजी में देश को गौरवान्वित किया। उनका निधन भारतीय खेल जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। मैक्सिको में फीफा विश्व कप के उद्घाटन मैच में कल रात मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। कनाडा, मैक्सिको और अमरीका में आयोजित इस विश्व कप में 48 टीमों द्वारा 104 मैच खेले जाएंगे और तुर्की में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय जोड़ी बी धीरज और कुमकुम मोहद ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपके प्यारे प्यारे पत्र हमारे हाथों में हैं और हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद के गीत। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने चुना है, मन्ना डे की आवाज है, फिल्म का नाम है दिल ही तो है। साहिल लुधियानवी ने गीत लिखा है, संगीत रोशन का है, पसंद आप सब श्रोताओं की। भोपाल से कुसुम ज्योति अर्जुन परी और इनके परिवार ने सुनना चाहा है ये गीत। मिष्टी लक्ष्मी भूपेंद्र वर्मा इस गीत को पसंद कर रहे हैं। राकेश और डॉक्टर विनोद ने भोपाल से इस गीत को पसंद किया है। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर दिल ही तो है फिल्म का ये गीत।

0: दिल का।
1: और अब आपको सुनवा रहे हैं दस्तक फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। मजरूह के बोल हैं, संगीत मदन मोहन का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर ने अमलेश्वर से ये गीत सुनना चाहा है। दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा ने इस गीत के लिए हमें पत्र लिखा है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सुरेंद्र और कुसुम भारद्वाज। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं बसंत बहार फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है मन्ना डे और भीमसेन जोशी ने। शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत शंकर जयकिशन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने राजिम से हमें ये गीत सुनने की ख्वाहिश लिख भेजी है। पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव का पत्र हमें मिला है। तो आइए सुनते हैं बसंत बहार फिल्म का ये गीत।

अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सहरा फिल्म का वो नगमा जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत रामलाल का है। पसंद आप सब श्रोताओं की, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामिनी इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद किया है अंतिमा और सोना ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं गुलजार का लिखा नगमा, आवाज भूपेंद्र और सुलक्षणा पंडित की। कानू रॉय ने संगीत तैयार किया है। फिल्म का नाम है गृह प्रवेश। पसंद आप सब श्रोताओं की। देवास से मनीष, मृत्युंजय, शिखा और पूनम ने इस गीत को सुनना चाहा है। मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न वाल्मीक, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल और अजय खिरुड़कर इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं इन सब के साथ हम भी गृह प्रवेश फिल्म का ये नगमा।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

0: Okay.
1: मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1179 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए ये संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001 4242 पर।
0: 8700014242।

0: 7000001 4242।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001 4242 पर।
0: 8700001 4242।
2: ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। दोपहर के 12:30 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जंग लगी तलवार। आज सुनिए इसकी 7वीं कड़ी।
4: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना बलबीर स्वामी दलित बस्ती में सभा को संबोधित करते हुए हड़ताल के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। वो कंपनी को दिए जाने वाले नोटिस को पढ़कर मजदूरों को सुनाता है। मजदूर कहते हैं कि हड़ताल का प्रभाव उल्टा पड़ा तो वे यूनियन नेताओं को साई के बालू में जिंदा दफना देंगे। यशवंत अकेले में नारायणी के विषय में सोचता है। लिचू और शिबू हड़ताल को लेकर अपने नजरिए से बात करते हैं। यशवंत नारायणी से शिबू का हालचाल पूछता है। नारायणी उसे घर आने के लिए कहती है। लिचू और शिबू दलित मजदूरों की दुर्दशा पर बहस करते हैं। अब

0: भगवान भी कितना निर्दयी है, खाने पहनने को तो देता नहीं, शरीर को रोगी जरूर बना देता है। हम गरीबों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, इससे तो मरना बेहतर है।
1: नारायणी
0: बोलो,
1: तू ठीक कहती है नारायणी, मैं अभागा तुझ पर बोझ बनकर जी रहा हूँ।
0: नहीं नहीं
1: नारायणी, तू एक काम कर, मेरा मेरा गला दबा दे नारायणी, मेरा गला दबा दे। ना रहेगा पास और ना बचेगी बात।
0: क्या कह रही हैं आप?
1: अरे मैं सच कह रहा हूँ नारायणी, अपना ये बोझ अब मुझसे सहन नहीं होता। अरे अब तो मर कर ही शांति मिलेगी।
0: नहीं नहीं ऐसा ना कहिए।
1: मुझे मार डाल नारायणी, मुझे मार डाल। अरे मुझे मुक्ति दे, मुझे मुक्ति देकर तू भी मुक्त हो जा। जा जा मेरे भाई से।
0: नहीं स्वामी नहीं, आपके बिना मैं नहीं जी सकती। पति या पंग हो या बीमार, एक औरत का वही सबसे बड़ा सहारा होता है। फिर कभी ऐसी बात अपने मुंह से ना निकालना, कभी ना निकालना।
1: नारायणी
0: ये क्या, मुन्ना रोने लगा, इसे भी अभी उठना था। मैं क्या करूं, मुझे काम पर जाने को देर हो रही है, क्या करूं मैं?
1: नारायणी नारायणी तू जा, तू जा, मैं इसे चुप करा लूंगा। तू जा।
0: कैसे जाऊं?

0: खाऊंगा तो जा, जा।
1: एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती है, कैसे जा सकती है? नहीं नहीं जा सकती ऐसे। हाँ मेरे मुन्ने, अच्छा हाँ बेटा मेरी गोद में आ जा। अच्छा मत रो, मत रो मेरे लाडले, चुप हो जा। ठीक ठीक मैं तुझे नोरी सदाऊंगी, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे ये तो और जोर से रोने लगा।
0: अरे नारायणी, भूखा बच्चा रोएगा नहीं तो क्या करेगा, क्या हंसेगा, हंसेगा ये?
1: तो मैं भी क्या करूं, दूध भी खत्म हो गया है, क्या पिलाऊं इसे? हाँ पानी पिला देती हूँ। सुनो, काम से वापस आते समय 5 रुपए का दूध ले आऊंगी, ठीक है ना?
0: ठीक है, अभी तो इसे चुप करा।
1: हाँ पानी पिलाती हूँ, ले ले बेटा पानी पी ले। अरे अरे क्या करूँ मैं, ये तो चुप ही नहीं हो रहा, क्या करूँ अब मैं?
2: अरे शिभू, घर में हो क्या?
0: कौन है भाई?
2: मैं यशवंत।
0: हो यशवंत भाई, आओ आओ आ जाओ, अंदर आ जाओ।
3: कैसा है शिबू?
0: अरे यशवंत भाई, लाचार इंसान कैसा हो सकता है? भगवान से दिन रात ये मांगा करता हूँ कि मुझे बहुत दे दे
3: शिबू,
0: बहुत दे दे मुझे, पर नहीं, भगवान गरीबों की फरियाद कहाँ सुनता है?
3: खबरदार शिवू, जब तुम कभी मरने की बात की तो। अरे अभी तो तुझे बरसों जीना है, बरसों, समझा?
4: यशवंत बाबू, आप किसी काम से आए थे?
3: हाँ बस तुम लोगों का हालचाल पूछने आया था। एक बात और।
4: कौन सी बात?
3: परसों नोटिस की मियाद खत्म हो रही है, परसों से हड़ताल शुरू होगी, बस यही बताने आया था।
4: हड़ताल? यशवंत बाबू, हड़ताल शुरू हो गई तो हम खाएंगे क्या?
3: अब
4: हम तो रोज कुआं खोदकर पीने वालों में से हैं, बिना मजूरी किए तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा ना।
3: तेरी बात में दम है नारायणी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना।
4: हमारे पास खोने के लिए है ही क्या? अपने पेट पर तो हम पत्थर बांध भी ले, पर बच्चों के मुंह से दूध तो नहीं छीन सकते ना।
3: धैर्य से काम ले नारायणी, धैर्य से काम ले। देख, इस हड़ताल का नतीजा जरूर अच्छा निकलेगा, और तब कोई बेकार नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, सब खुशहाल हो जाएंगे। अच्छा शिबू, अब मैं चलता हूँ, दूसरे लोगों को भी ये बात समझानी है।
0: अच्छा नारायण, ठीक है।
4: आप भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए।
5: सुनो भाइयों, सुनो, क्या कह रहे
6: हो? मेरी बात ध्यान से सुनो।
5: अरे तुम क्या कहना चाहते हो काका? और तुम्हारे हाथ में ये डिब्बा कैसा है?
6: कैसा है डिब्बा? यही तो बताना चाहता हूँ मैं। मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस डिब्बे में अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर डालें।
5: किस लिए काका?
6: अरे परसों से हड़ताल शुरू हो रही है, भगवान ना करे ऐसा दिन आए, मगर जब बच्चे भूख से बिलखने लगेंगे तो इन्हीं पैसों से उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। अरे आओ आओ सभी लोग, इस डिब्बे में पैसे डालो।
7: ठगने का धंधा अच्छा बनाया तुमने, क्या समझता है तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगे हम लोग?
8: जब डिब्बा भर जाएगा तो इसे लेकर चंपत हो जाओगे। हमें मूर्ख समझ रखा है क्या?
6: नहीं भाइयों नहीं, ना तो मैं ठग हूँ और ना ही बेईमान। मुझे अंदेशा हो रहा है कि हम लोगों पर संकट के बादल छा जाएंगे, हमारे बच्चे भूख से बिलख बिलख कर दम तोड़ देंगे, रोटी के एक एक टुकड़े के लिए इंसानों और जानवरों में लड़ाई होगी। ऐसे बुरे वक्त के लिए मैं तुम लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ भाई।
7: इस बूढ़े का दिमाग फिर गया है, उधर यूनियन वाले चंदा ले रहे हैं, उधर ये से फिरा। अरे चलो चलो भाइयों, अरे चलो अपने काम पर चलो।
6: मेरी बात तो सुनो। अरे ऐसा नहीं है, सुनो
5: मैं।
6: चले गए सब।

0: सब नहीं काका, मैं हूं ना।
1: तू भी चला जा बेटा, जब कोई नहीं रुका तो तू क्यों रुका हुआ है?
0: क्योंकि मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है।
1: सच?
0: हाँ काका। काका, मेरी जेब में कुल 2 रुपए हैं, ये मैं आपके डिब्बे में डाल देता हूँ।
1: भगवान तेरा भला करे, औरों को भी इसी तरह सद्बुद्धि दे।

0: मजदूर साथियों, मजदूर साथियों, कंपनी को दिए नोटिस की मियाद आज खत्म हो गई। कंपनी के अधिकारियों ने हमारी मांगों को गैर कानूनी ठहरा दिया है। आज से हम हड़ताल पर हैं। आज से काम बंद।
1: काम बंद।
0: सभी मजदूर अपनी एकता का परिचय दें और यूनियन के जलसों और सभाओं में भारी तादाद में हिस्सा लेकर कंपनी को अपनी मांगों को मनवाने के लिए मजबूर कर दें। सभी लोग नारा लगाएं, मजदूर एकता
2: जिंदाबाद, जिंदाबाद,
0: मजदूर एकता
2: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
0: हर जोर जुल्म की टक्कर में
2: संघर्ष हमारा नारा है।
0: हर जोर जुल्म की टक्कर में
2: संघर्ष हमारा नारा है।
3: लो भैया शिवू, अरे हड़ताल शुरू हो गई। कल तक काम ही काम रहता था, मगर अब तो बेकार हो गए। अरे भैया, खाली बैठे बैठे तो समय काटना भी मुश्किल हो गया है।
4: अरे लीचू, मुझे तो इसकी आदत पड़ गई है भाई। हाँ, तुम जैसे लोगों के लिए जरूर मुश्किल हो गई है।
3: अरे जगन्नाथ, अरे तू क्या कर रहा है बेटा?
5: बापू देखो, मैंने अपना नाम लिखना भी सीख लिया है।
3: अच्छा,
5: जरा पढ़कर तो देखो, ठीक लिखा है?
4: अरे वाह। अरे क्या तू हमारा नाम भी लिख सकता है? है? लिख सकता है क्या?
5: हाँ।
4: चल रहने दे, हमें कौन सा पढ़ना आता है।
3: हाँ शिवू, जिंदगी में हम दोनों ने अपना नाम भी लिखना नहीं सीखा है।
4: लीचू भैया, हम तो ठहरे अंगूठा टेक, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है।
3: सही कहते हो भैया।
5: बापू।
3: हाँ क्या है?
5: मैं खेलने जाऊं?
3: आ जा, लेकिन जल्दी लौट आइयो। अच्छा
5: ठीक है
3: बापू। हाँ। हड़ताल से साई नदी कितनी शांत हो गई है ना शिवू। ना लोगों की भागम भाग है, ना क्रेशर की कान फोड़ घर घराहट है, ना कुछ।
4: हाँ लीचू, ऐसा लगता है जैसे साईं भी चैन की सांस ले रही है।
3: हाँ।
4: शांत और निर्मल साईं, किसी सपने जैसी।
3: सही कहते हो शिवू।
4: ले, भंग हो गई ना साईं की शांति, अब नारों का शोर गूंजा करेगा यहाँ।
3: अरे क्या हुआ? ये तो अपना यशवंत है, इसने तो आज खादी का नया कुर्ता पजामा पहन रखा है। खरीदने के लिए इतने पैसे कहां से आए इसके पास?
4: अरे यूनियन का चंदा जो जमा हुआ है, उसी से खरीदे होंगे और क्या।
3: अच्छा अच्छा। सही कहते हो भैया।
4: चल हम भी चलते हैं, नहीं तो यशवंत हमें गद्दार समझेगा।
3: हाँ ठीक है ठीक है, चल चल
4: चल
3: चल।

0: मेरे मजदूर भाइयों, हमारी हड़ताल को 3 दिन हो गए लेकिन अभी तक कंपनी के अधिकारियों ने हमसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की।
1: हमारी एकता जिंदाबाद।

0: आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, आज हमारा जुलूस कंपनी के दफ्तर तक जाएगा ताकि हम अपनी आवाज इन गूंगे बहरे अधिकारियों तक पहुंचा सके। पता चला है कि बलबीर स्वामी के साथ लोकल लीडर जी भी वहीं पहुंच रहे हैं।
1: यशवंत भैया
2: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
1: यशवंत भैया
2: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
1: यशवंत भैया संघर्ष करो,
2: हम तुम्हारे साथ हैं।
1: यशवंत भैया संघर्ष करो,
2: हम तुम्हारे साथ हैं।
0: नहीं भाइयों, मेरी जय जयकार करने की जरूरत नहीं है। बोलो मजदूरों की जय हो, मजदूरों की एकता की जय हो।
1: मजदूर यूनियन
2: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
1: मजदूर यूनियन
2: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
0: भाइयों, अब हमारा जुलूस और आगे बढ़ेगा और कंपनी के दफ्तर की ओर जाएगा। आप लोग मेरे पीछे जोर शोर से नारे लगाएंगे, बोलो लड़ेंगे,
2: जीतेंगे,
3: जीतेंगे,
2: जीतेंगे,
3: लड़ेंगे,
2: जीतेंगे,
3: जीतेंगे।
0: अभी तो ये अंगड़ाई है,
2: आगे बड़ी लड़ाई है।
0: जो हमसे टकराएगा
2: चूर चूर हो जाएगा।
0: कंपनी होश में आओ,
2: होश में आओ, होश में आओ,
1: होश में आओ,
2: होश में आओ,
3: होश में आओ।
4: शाबाश यशवंत, शाबाश। जानते हो शास्त्री जी तुमसे बहुत खुश हैं।
5: अरे
4: तुमने जिस तरह से हड़ताल का नेतृत्व किया है उस हिसाब से यूनियन के अध्यक्ष पद की कुर्सी तुमसे बहुत अधिक दिनों तक दूर नहीं रह सकती। शास्त्री जी का भी यही मानना है।
5: मुझे अध्यक्ष पद का कोई लालच नहीं है बलबीर स्वामी। हाँ, मैं तो बस उस दिन के इंतजार में हूँ जब कंपनी अपने घुटने टेक देगी और सभी दिहाड़ी मजदूरों को परमानेंट कर दिया जाएगा। तब किसी मजदूर की छटनी नहीं होगी और सब सब खुशहाल होंगे।
4: तू चिंता मत कर यशवंत, बस बस मजदूरों का जोश ठंडा मत पड़ने दे। और भगवान ने चाहा तो कामयाबी जल्दी ही हमारे कदम थूमेगी। जीत हमारी ही होगी यशवंत, जीत हमारी ही होगी। और एक दिन देखना, एक दिन कंपनी को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा।
5: भूखे पेट हड़ताल लंबे समय तक नहीं चल सकती बलबीर। इससे पहले कि मजदूर विवश होकर काम पर लौटना शुरू कर दें, उससे पहले ही फैसला हो जाना चाहिए।
4: तुम इसकी परवाह मत करो यशवंत, शास्त्री जी हाथ पैर मार रहे हैं और जल्द ही उसका परिणाम हम सबके सामने होगा। बस बस तुम मजदूरों को संभालो।
5: उसकी चिंता तुम मत करो, साइट के सारे मजदूर हमारे साथ हैं।
4: हाँ यशवंत, एक बात और।
5: क्या?
4: यूनियन का चंदा खत्म हो रहा है।
5: हाँ?
4: और तुम तो जानते ही हो कि बिना धन के आंदोलन नहीं चल सकता। तुम एक काम करो, तुम मजदूरों से चंदा लेकर यूनियन में जमा करवाओ।
5: लेकिन बलबीर, पिछले हफ्ते ही तो मजदूरों ने चंदा दिया था। 10 रुपए हर मजदूर के हिसाब से 4,000 मजदूरों से कुल 40,000 रुपए आए थे। सब इतनी जल्दी खत्म हो गए?
4: देखो शास्त्री जी, मजदूरों को उनका हक दिलवाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। हजारों झंडे बैनर भी बनवाने पड़े हैं, क्या इन पर कम खर्च आता है?
5: सो तो ठीक है बलबीर, लेकिन तुमने तो कहा था कि पैसा यूनियन के मुख्यालय से आएगा। तुम्हारी उस जुबान का, तुम्हारे उस वायदे का क्या हुआ?
4: देखो मुख्यालय को लिखा जा चुका है और वहां से पैसा आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन तब तक हाथ पैर धरे तो बैठा नहीं जा सकता।
5: हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो बलबीर स्वामी।
4: देखो तुम 10 रुपए हर मजदूर से चंदा इकट्ठा करो और यूनियन के कोष में जमा करवाओ, समझे?
5: हाँ, समझ गया बलबीर।
6: आराम से।
7: अरे नारायणी, ये तू मुझे कहाँ ले आई?
6: नहा लो ना।
7: नहा लो? पर क्यों? देखो नारायणी, साईं का पानी बहुत ठंडा है। ठंडे पानी से तो मैं अकड़ कर मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा।
6: मत करो, जल्दी से नहा लो। जब तक नहाओगे नहीं मैं बात नहीं करूंगी। हाँ,
7: अरे कमाल है, ये भला कैसी जिद है नारायणी। देख नारायणी, मुझ पर रहम कर। इस ठंडे पानी से मुझे बहुत थक लग रहा है। हाँ नारायणी, मैं नहीं, मैं नहीं
6: नहाऊंगा। नहाने से डरते हो?
7: नहीं,
6: चलो चलो जल्दी से नहा लो। अरे नहा लो ना, कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी करो।

0: मैं कोशिश करता हूँ। शिव बेटा, चढ़ जा सूली पर और उतर जा पानी में। भगवान भले करेंगे, उतर जा। अरे हो, अरे बड़ा ठंडा पानी, अरे बहुत ठंडा पानी, बचा, अरे बचा, अरे अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे, अरे साईं की धारा मुझे बाहर ले जा रही है, अरे बचाओ,
1: ये तो ठंड के मारे अकड़ गया है। नारायणी, बीमार आदमी को ठंडे पानी में क्यों नहलाया?
2: वो यशवंत बाबू एक महीने से ये नहाए नहीं थे। मारे बदबू के मैं सो नहीं पाती थी, नहलाती नहीं तो और क्या करती।
3: अरे भैया बामू, ये नारायणी की देह को क्या हो गया है?
4: बेचारी पहले कितनी सुंदर थी, मगर अब उसके हाथ पैर तो देखो, ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लटका हो।
3: अरे भैया बामू, गरीब ना होती तो किसी खूबसूरत रानी से कम ना लगती।
4: अबे चुप, अब क्यों लार टपका रहा है तू?
3: और तू क्यों उसे बार बार देख रहा है? अबे देखता नहीं, यशवंत उसके पति की सेवा कर रहा है, देख ले।
1: तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? चलो भागो यहाँ से, जाओ यहाँ
3: से। भैया बाबू,
1: बेवकूफ कहीं के। नारायणी, इसे मैं कंधे पर उठा लेता हूँ, घर तक छोड़ दूंगा।
2: ठीक है।

0: पहुंच गए नारायणी।
1: यशवंत बाबू हाँ? मैं चारपाई बिछाती हूँ।
0: ठीक है।
1: मैं आपका किस मुंह से धन्यवाद करूं? आप मेरे पति को उठाकर घर लाए हैं। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी यशवंत बाबू?
0: नहीं नारायणी, नहीं, ये एहसान नहीं है। अरे ये तो मेरा फर्ज था। अब तू एक काम कर, तेल ले आ, तो मैं इसके हाथ पैर की मालिश कर दूं, थोड़ी जान आ जाएगी इसमें।
1: यशवंत बाबू, इतनी सेवा तो मैं भी इनकी नहीं कर पाती। मैं आपका ये ऋण जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी।

0: अरे शिवू भैया,
1: लिचू भैया,
0: जब से हड़ताल शुरू हुई है जीभ शराब का स्वाद चखने के लिए तरस गई है।
1: अरे हाँ लिचू भैया। अरे भैया, हड़ताल से पहले काम करते थे तो 4 पैसे हाथ में होते थे। हाय रे, मगर अब तो बदहाल हो गए हैं।
0: शिवू भाई, मेरा तो अब भी यही मानना है, इस हड़ताल वड़ताल से कुछ होने वाला नहीं है। अरे हड़ताल ऐसे ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान एक दूसरे का मांस नोच नोच कर खाएंगे। हाँ
1: हाँ लिचू भैया, सच कहता है तू, बिल्कुल सच कहता है।

0: लो, अब तो गिद्धों और चीरों ने भी मंडराना शुरू कर दिया है। हाँ, शायद इन्हें भी आभास हो गया है शिवू के थोड़े दिनों बाद यहाँ पर इंसानी लाशों के ढेर लड़ने शुरू हो जाएंगे।
1: अरे तभी तो भोजन की तलाश में ये यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं।
0: शिवू, कैसा दृश्य होगा, भूख से मरने वाले इंसानों का मांस नोच नोच कर परिंदे अपना पेट भरेंगे।

0: ना रे लीजू ना, मत बोल ऐसा, अरे मत बोल। भगवान ना करे ऐसा हो। अरे लीजू, क्या पता उन लाशों में मेरी और तेरी लाश भी हो।
1: अरे अच्छा ही तो है शिवू, कम से कम मरकर परिंदों का पेट तो भर सकेंगे। अरे अब जिंदा भी हैं तो किसी जानवर से बदतर जीवन जी रहे हैं शिबू, बदतर जीवन।
0: हाँ लीजू हाँ, मैं जानता हूँ, हम सभी जानते हैं। और देखा नहीं तूने, अरे साहब लोगों के कुत्तों को भी दूध भात खाने को मिलता है, और एक एक हम है रे, अरे हमें तो सड़ा भात भी नसीब नहीं होता।
1: अरे क्या रे शिबू,
0: सच कहता हूँ मैं।
2: नारायण,
0: अरे तू भाग कर क्यों आ रही है? अरे बोल ना, क्या बात है?
3: मेरे पास ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है। ये लो 5 रुपए, लीचू के सजा कर दूध ले आओ। मुन्ना उठे तो उसे पिला देना, मैं चलती हूँ।
2: अरे पर सुन तो सही, तू जा कर रही है?
3: देखो बड़ी मुश्किल से आज के दिन साहब के घर में काम मिला है, मुझे साहब के घर वापस जाना है। 2 बाल्टी कपड़े निकाल रखे है, उन्होंने ये रुपए दिए है। देखो तुम जल्दी से जाकर दूध ले आओ, बच्चे के पेट में कुछ तो जाए। मैं वापस जा रही हूँ, बच्चे का ध्यान रखना, दूध जरूर पिला देना उसे।
2: हाँ हाँ तू जा, मैं देख लूंगा।
1: शिवू शिवू जरूर उठ, मेरा सहारा ले ले। अरे बच्चे को दूध देकर हम खलासी के लंगर तक जा सकते हैं।
0: खलासी लंगर? अरे वाह वाह,
1: अरे क्या मजे की बात कही है तूने।
0: अरे बात सुन, देख 1 रुपए का तो दूध आ जाएगा, हाँ। बाकी बचे 4 रुपए।
1: अरे 4 रुपए में तो शिवू हम दोनों थक जाएंगे।
0: हाँ वाह वाह। अरे अच्छा एक बात तो बता लीजू, हाँ। क्या वो आजकल भी खलासी लंगर में साइकिल की ट्यूब में भरकर बरेली के बाजार से शराब आती है?
1: अरे आती क्यों नहीं है मेरे भाई, आती क्यों नहीं है? उन्हें भूखे थोड़े ही मरना है जो अपना धंधा बंद करेंगे।
0: ठीक कहता है तो। अच्छा सुन, सुना है कि वो लोग साई नदी के मेंढक और केंचुए भी चढ़ाते हैं?
1: अरे बिल्कुल ठीक सुना है शिवू, बिल्कुल ठीक। शराब का धंधा करने वाले भी क्या क्या तमाशा करता है शिवू। अच्छा? साहब लोगों के घरों से विलायती शराब की बोतलें इकट्ठी करते हैं, फिर उसमें मेंढक और केंचुए चढ़ाते हैं।
0: अच्छा?
1: और बाद में उसमें देशी शराब का घोल डाल देते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह, और हम लोग उसे चटकारे ले लेकर पीते हैं। अरे वाह लीचू भैया, मजा भी तो खूब देती है वो।
2: अच्छा जल्दी चल, जल्दी चल, बच्चा उठ गया तो शामत आ जाएगी।
0: अरे हाँ,
2: अरे सब खेत बिगड़ जाएगा।
0: हाँ,
1: हम दोनों को साथ देखकर वैसे भी लोगों के पेट में दर्द तो होने लगता है।
0: ये
2: चल चल चल चल,
0: अरे अरे मेरा हाथ तो पकड़, चल चल चल।

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत जंग लगी तलवार की 7वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास के दौरान 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को सुबह 6:15 पर आयोजित होने वाले विशेष ऑनलाइन योग सत्र में शामिल होने की अपील की है। इसमें कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीयन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा का परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी मंडल के आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.mponline.gov.in पर रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से मुकाबला होगा। और 10वें आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से हो रही है। इंग्लैंड वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारतीय महिला टीम का मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के साथ होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम।

जीवन की सुगंध का आनंद तो वही ले सकता है जो खिलने और बिखरने वाले पलों के बीच महकने की काबिलियत रखता है। तो चलिए अलसाई सी इस दोपहर के खूबसूरत से पलों में हम लेकर एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला सभा। तो स्वीकार कीजिए हिमलता खरे का प्यार भरा नमस्कार। वक्त से पहले ही वो हमसे रूठ गई, वक्त से पहले ही वो हमसे रूठ गई, बचपन की मासूमियत न जाने कहाँ छूट गई। बहनों, हर बच्चा मुस्कुराना चाहता है, पढ़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, मगर कई बार गरीबी, अशिक्षा, जागरूकता की कमी, कोई मजबूरी या विपरीत परिस्थितियों के कारण बच्चों को मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। उनसे उनकी मासूमियत मानो रूठ सी जाती है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य बाल मजदूरी को पूरी तरह से बंद करने के लिए दुनिया भर में बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों से वंचित होने से बचाना है। इस दिन का उद्देश्य समाज को यह समझाना है कि बच्चों से मजदूरी कराना गैर कानूनी है, अमानवीय है। बचपन में बच्चों को पढ़ने लिखने और खेलने का अधिकार मिलना चाहिए, न कि उन्हें आर्थिक तंगी के कारण जोखिम भरे काम करना चाहिए। हर बाल श्रम से जुड़ा बच्चा यही महसूस करता है कि बहुत खूबसूरत था ये महसूस ही न हुआ, बहुत खूबसूरत था ये महसूस ही न हुआ, कब कहाँ और कैसे छूट गया बचपन। यह दिन बाल श्रम से जुड़ी समस्याओं जैसे गरीबी और अशिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। बाल श्रम का अर्थ ऐसे शारीरिक अमानवीय कार्यों से है जो बच्चों के बचपन, उनकी क्षमता और गरिमा को छीनते हैं। यह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। बहनों, बाल श्रम को जड़ से खत्म करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, मगर इसे जड़ से खत्म करने के लिए हमें भी अपने कर्तव्य निभाने होंगे। बाल मजदूरी न करवाएं और न ही इनका समर्थन करें। बाल मजदूरी कराने वालों के प्रति शिकायत दर्ज कराएं। गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करें। लोगों को भी बाल श्रम के खिलाफ जागरूक करें। बच्चों को उनकी उमंग और मस्तियों में उड़ने देना चाहिए, ताकि वे विकास करें, आगे बढ़ें और समाज के विकास में सहयोग देकर लोगों के लिए पथ प्रदर्शक बने। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, लौट कर बचपन के फिर वो जमाने नहीं आते। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, मगर बहुत खूबसूरत होता है किसी के लिए जरूरी होना।

अभी बहनें सुन रही थी गाइड फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीत लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। जिंदगी की जंग में खुद की ढाल बनो, जिंदगी की जंग में खुद की ढाल बनो, मुसीबत के आगे कभी ना मलाल करो, सीखो तुम आत्मरक्षा के हुनर यहाँ, ताकि खुद पर तुम हमेशा एतबार करो। हाँ बहनों, हमारा जीवन अनमोल है और इसीलिए इसकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। अपने मान सम्मान और अस्तित्व की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा। आत्मरक्षा केवल शारीरिक कौशल नहीं, बल्कि यह सुरक्षा, आत्मविश्वास और मानसिक जागरूकता का मूल मंत्र है। यह हुनर किसी भी आपातकालीन परिस्थिति या खतरे के समय स्वयं की रक्षा करने और बिना डरे जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। वास्तव में जटिल परिस्थिति में स्वयं की रक्षा का सशक्त माध्यम है सेल्फ डिफेंस। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम आत्मरक्षा के गुण सीखें और खुद को विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रखें। आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट्स जैसे प्रशिक्षण ले सकती हैं, साथ ही

0: परिस्थिति के अनुसार आप हिम्मत से काम लेते हुए आत्मरक्षा कर सकती हैं। सेल्फ डिफेंस हमें शारीरिक मानसिक रूप से खतरे के लिए तैयार रखता है। सतर्कता, जागरूकता, सही समय पर सही निर्णय और निडरता से हम आत्मरक्षा कर सकते हैं। आत्मरक्षा सीखने से आप बिना डरे कहीं भी आ जा सकती हैं। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। तो बहनों, आत्मरक्षा का हुनर जरूर सीखिए और जीवन को सरल, सुरक्षित बनाइए और निडर होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। सेल्फ डिफेंस सम्मान से जीने की आजादी देता है, वहीं आत्मरक्षा साहस और जागरूकता का प्रतीक है। यह केवल शारीरिक बचाव नहीं बल्कि आत्मविश्वास की ढाल है। छोड़कर उम्मीदें गैरों से मदद की मुसीबत की घड़ी में आत्मरक्षा का हुनर भी जरूरी है। पलक पर अगर हो आंसू तो ये नहीं काफी, इन्हें शब्दों में पिरोने का हुनर भी आना चाहिए। हाँ बहनों, अपने हुनर से समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को शब्दों में पिरोकर रचनाओं के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हैं कवयित्री बहन। तो लीजिए सुनिए ये काव्य पाठ। कवयित्री बहन है डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला।
1: मेरी एक कविता है जिसका की शीर्षक है स्तब्ध। ये कविता मैंने लिखी है जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती हमारी गर्म हो रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, नदियां तरताल सूख रहे हैं, तो इसमें यह बहुत ही कम शब्दों में बड़ा संदेश देने वाली कविता है। और आखिरी के चार लाइनों में आप देखेंगे कि आप क्या करिए जिससे कि आप धरती की मदद कर सकें। तो ध्यान चाहूंगी तो सुनिएगा। तप्त स्तब्ध धरा प्रारब्ध, मानव तृप्त करे संतृप्त, जलता अलाव गई शीतल छांव, हरियाली लुप्त खुशहाली विलुप्त, तपती बयार झुलसा संसार, यूं कहां गया मां का दुलार, सूखी नदियां सूखे तरताल, यूं उठा बवाल जीवन बेहाल, कर दे उद्धार कर ले उपकार, यूं दोहन छोड़ यूं मुह न मोड़, करना विक्षिप्त अपना भविष्य, तू हाथ बढ़ा कुछ कर भला। तो ये एक कविता है जो धरती माँ को बचाने, उसका दोहन बचाने का आह्वान करती है। यह कविता मैंने लिखी है सर्कस के बारे में। जिंदगी को एक सर्कस की तरह मैंने इस कविता में बताया है। तो सुनिएगा सर्कस। जिंदगी एक सर्कस है, सब नाच रहे हैं कमर कस, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, चाह कर भी चले न बस, कहीं बंदर कूदनी कहीं हवा में झूलनी, कहीं बंदर कूदनी कहीं हवा में झूलनी, कहीं धीमा कहीं एकदम तेज, सावधान कहीं गिरना नहीं, कहीं एक तार पे चलना कहीं मुंह से आग उगलना, कहीं एक तार पे चलना कहीं मुंह से आग उगलना, कभी टूटे कांच पे चलना, जीवन भी तो है ऐसा ही खेल, कोई हाथ बिना गाड़ी चलाए, कोई हाथ बिना गाड़ी चलाए, जैसे हर मुश्किल को ठेंगा दिखलाए। जिंदगी एक लंबा सर्कस, वो एक मदारी सबको नाच नचाए, कौन कहां पर कैसे करतब दिखलाएगा, इसका लेख जन्म से ही सब लिख कर लाए, सब मिलकर खेलेंगे खेल, सब मिलकर खेलेंगे खेल, जो गिरा वो निकले पर खेल चले, जो गिरा वो निकले पर खेल चले, जो बचा वो पूरी लगन से खेले, जो बचा वो पूरी लगन से खेले, अगले पल उसका भी निकास चले, अगले पल उसका भी निकास चले। क्योंकि जिंदगी एक सर्कस है, सब नाच रहे हैं कमर कस, कोई कभी ऊपर कभी कोई नीचे, चाह कर भी चले न बस, जिंदगी एक सर्कस। ये मेरी एक कविता है हरी चूड़ियां। हम अक्सर देखते हैं हमारे समाज में लड़कियां आज भी दहेज की आग में जलाई जा रही हैं, या किसी न किसी तरीके से सताई जा रही हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से। तो ये एक लड़की का संकल्प बताती हुई कविता है कि अगर ऐसी कंडीशन या ऐसी परिस्थिति में वो फंस जाए तो उसको कैसे आगे चलना चाहिए। तो ध्यान चाहूंगी। हरी चूड़ियां, हरी थी चूड़ियां हरी थी धरती, हरी थी चूड़ियां हरी थी धरती, गांव का उसके वो खेत भी तो था हरा, हरी खनखनाती पहने थी वो चूड़ियाँ, लेकर चली मन में ससुराल का सपना भी हरा, लेकर चली मन में ससुराल का सपना भी हरा। नववधु के कुछ दिन तो खुशियों में निकल गए, नववधु के कुछ दिन तो खुशियों में निकल गए, उन हरी चूड़ियों की खनक से गूंज गए, पर ससुराल का सावन

0: बातों जैसी ही थी, पिया की फीकी बातों जैसी ही थी, सासू माँ के तानों से जैसे रंग उसका उड़ गया था। हरी थी चूड़ियां, हरी थी धरती। रंग उड़कर अब फिर वैसा नहीं चढ़ेगा, रंग उड़कर अब फिर वैसा नहीं चढ़ेगा, मन की गांठों के अंदर कहीं छुपा होगा शायद, मन की गांठों के अंदर कहीं छुपा होगा शायद, दहेज की आग में हरियाली खो गई, जलती देह में कई जख्म जगमगा गई। दहेज की आग में हरियाली कहीं खो गई, जलती देह में कई जख्म जगमगा गई। बोली बाबा अब ना मैं फिर हरी चूड़ियों को पहनूंगी, बोली बाबा अब ना मैं फिर हरी चूड़ियों को पहनूंगी, कमजोर मन और तन में अब ज्वाला भर लूंगी, कमजोर मन और तन में अब ज्वाला भर लूंगी, मुझे कोई अब दहेज के लिए जला न सकेगा, मुझे कोई अब दहेज के लिए जला न सकेगा, लाख कोशिश करे जमाना ये मुझे अब दबा न सकेगा, लाख कोशिश करे जमाना ये मुझे अब दबा न सकेगा। एक कविता ये मेरी है, अच्छा ही हुआ, कविता का शीर्षक है अच्छा ही हुआ। कई बार हम जिंदगी में सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, कुछ लोगों ने हमें सहारा नहीं दिया, या कुछ हमारे साथियों ने हमारी मदद नहीं की, या हमारे किसी सीनियर ऑफिसर ने हमारा फेवर नहीं किया, हमारी मदद नहीं की, तो हम बड़ा दुख फील करते हैं। मगर आप कभी पीछे पलट के अपनी ज़िंदगी को देखिएगा कि अगर आप मेहनत करते रहें, ईमानदारी से चलते रहें, तो आपके साथ अच्छा ही होता है। तो ध्यान चाहूँगी, अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला, अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला, मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया, मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया, अच्छा ही हुआ उन्होंने मुंह मोड़ लिया, अच्छा ही हुआ उन्होंने मुंह मोड़ लिया, जिनको हम चाह किए, जिनको हम चाह किए, क्योंकि कुछ और भी प्यारे रिश्ते बन गए, क्योंकि कुछ और भी प्यारे रिश्ते बन गए, अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी दोस्ती ठुकरा दी, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी दोस्ती ठुकरा दी, अपनेपन की खोज में अब कुछ नए दोस्त बन गए, अपनेपन की खोज में अब कुछ नए दोस्त बन गए, अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी इज्जत ना की, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी इज्जत ना की, हम इतने समझदार हो गए कि इज्जत करने का सलीका आ गया, हम इतने समझदार हो गए कि इज्जत करने का सलीका आ गया, अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी कीमत कम आंकी, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी कीमत कम आंकी, अपने को इतना तपाया, अपने को इतना तपाया कि बाजार में बेशकीमती हीरे से हो गए, कि बाजार में बेशकीमती हीरे से हो गए, अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला, मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया, मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया।
1: अभी बहनें सुन रही थीं काव्य पाठ, कवयित्री बहन थीं आराधना सिंह बुंदेला। ख्वाहिशों के काफिले भी अजीब होते हैं, ख्वाहिशों के काफिले भी अजीब होते हैं, ये वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते।

अभी बहने सुन रही थी कन्यादान फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की थी और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का। बहनों, सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए साक्षरता बहुत जरूरी है, वहीं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त होने के लिए बहुत जरूरी है वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता यानी धन को समझने और उसके प्रबंधन की बुनियादी कला। इसके माध्यम से महिलाएं अपने धन को सोच समझकर कमाना, खर्च करना, बचाना और निवेश करना सीख सकती हैं। यह कौशल हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाता है। वित्तीय साक्षरता हमें आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। वित्तीय साक्षरता के प्रमुख स्तंभ हैं जैसे कमाई, बजट बनाना, बचत करना और उधार प्रबंधन। बहनों, वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमें समझदार वित्तीय निर्णय लेने में मदद करती है, वित्तीय धोखाधड़ी से बचाती है, बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल लेन देन की शर्तों को समझने से वहीं हम धोखाधड़ी से भी बच सकते हैं।

या सुरक्षित रह सकते हैं। महंगाई से निपटने और रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित जीवन जीने के लिए भी निवेश जरूरी है। साथ ही वित्तीय साक्षरता से हमें आर्थिक तनाव से मुक्ति मिलती है और सही बजट और बचत से हमें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। वित्तीय साक्षरता वास्तव में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की रीढ़ है। वित्तीय ज्ञान महिलाओं को नए व्यवसाय शुरू करने और धन सृजन के अवसरों को जानने में मदद करता है। बढ़ती उम्र या किसी अनहोनी की स्थिति में यह ज्ञान एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करता है। जब बहनें आर्थिक रूप से जागरूक होती हैं, तो वे घर का बजट बेहतर तरीके से चलाती हैं और संकट के समय के लिए बेहतर बचत कर पाती हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से साक्षर और सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा भी कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो बहनों, वित्तीय साक्षरता से अपना जीवन खुशहाल बनाएं और सशक्त बने और निरंतर सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए समाज के लिए प्रेरणा बने। जो पैसों का मोल समझे, वही सुरक्षित अपना कल करे। वित्तीय ज्ञान की शक्ति से हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे। बहनों, आज हम आर्थिक रूप से भले ही सशक्त हों, मगर बहुत कुछ पाने की चाह में हम मानो मुस्कुराना ही भूल गए हैं। यदि आप स्वस्थ रहना चाहती हैं, जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहती हैं, तो हर पल मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। कभी चुपके से मुस्कुराकर तो देखना, कभी चुपके से मुस्कुराकर तो देखना, दिल पर लगे पहरे हटाकर तो देखना। ये जिंदगी भी आपके साथ साथ मुस्कुरा उठेगी, खुद पर कुछ लम्हे लुटाकर तो देखना। और बहनों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो बशीर बद्र साहब के इसी ख्याल के साथ कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो अगली मुलाकात तक के लिए अब अनुमति दीजिए हेमलता खरे को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
4: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर

0: आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में लीजिए, पहले सुनिए कृष्ण मोहन नायक के स्वर में योग गीत।

अभी आप सुन रहे थे जयंत विश्वकर्मा के स्वर में प्राणायाम गीत। इसी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे सोनाली जलोटा के गाए गीत।

सोनाली जलोटा के गाए इस गीत के साथ ही आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म चलते चलते का गीत। बोल अमित खन्ना के हैं, संगीत है बप्पी लहरी का।

कभी कभी। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। बोल साहिर के हैं और संगीत है खयाम का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से मदद कर रही है, ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
1: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इन मसौदा नियमों को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। जनता इन पर अपने विचार, टिप्पणियां और सुझाव 27 मई तक सरकार को भेज सकती हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा कि सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी द्वितीय वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकेंगे। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रहलाद जोशी ने आज खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके नामांकन पत्र रद्द किए जाने को चुनौती दी गई थी। प्रदेश में मॉनसून 17 से 18 जून के बीच राज्य के दक्षिणी जिलों में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। आज मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। पन्ना जिले में नेशनल हाईवे 39 पर बीती रात एक सड़क हादसे में अजयगढ़ थाने में तैनात 26 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। शिवपुरी के कोलारस में कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वेयरहाउस परिसर में कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से बड़ी मात्रा में उर्वरक जब्त कर FIR दर्ज की गई है। भोपाल में आधी रात पटाखा दुकान में भड़की भीषण आग पर दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस घटना में लाखों का माल जलकर राख हो गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं। दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी

0: नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24 लाख रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जाँच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकानी यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और अभी आप सुन रहे थे समाचारों की श्रृंखला। 2:30 हो चुके हैं और ये वक्त है हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम का, तो आइए आरंभ करते हैं इस कार्यक्रम को।

0: सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सुषमा आपके साथ और कार्यक्रम में सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और मेरे साथ साथ मेरे साथी भी हैं, उनका भी परिचय।
1: मैं विनोद कुमार और हर बार की तरह हम कोई ना कोई नई चीजें अपने किसान साथियों के लिए लेके आते हैं और आज उसी पे बात करेंगे।
0: बिल्कुल विनोद, उसी पर बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं हमारे किसानों के लिए, चाहे वो नई नई जानकारी हो, खेती की बात हो, नई नई मशीनों की बात हो या फिर खाद की भी बात हो।
1: बिल्कुल।
0: और खाद, आजकल असली खाद पर भी हम चर्चा कर सकते हैं क्योंकि नकली खाद बाजार में बहुत आ रही है, तो इस बात का ध्यान रखें किसान भाई बहन।
1: बिल्कुल, उसमें हमें ध्यान ये देना है। और दूसरा एक चीज और भी है, उसमें हम समय
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सनम तेरी कसम से, आवाज़ आशा भोसले की है। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और इसे संगीत से सजाया है R.D. बर्मन ने। और पसंद है आप सभी श्रोताओं की छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की। इसी गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरव शर्मा। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म सनम तेरी कसम का ये गीत।

ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, महाराष्ट्र बीड़ शहर से प्रकाश पागरिया, पराग पागरिया, प्रदीप और केशव पटेल। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म त्रिशूल का गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशुदास की हैं, बोल साहिर के हैं और संगीत है खयाम का। लीजिए सुनिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। आप सभी ने सुनना चाहा है साहिर का लिखा, खयाम का संगीत से सजाया हुआ गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है चंबल की कसम। लीजिए सुनिए।

आप तो ऐसे ना थे। इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बोल निदा फाजली के हैं और संगीत है उषा खन्ना का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। भाटापारा से ही दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत। धुर्रा बांधा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म आप तो ऐसे ना थे का ये गीत।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म धनवान का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है साहिर ने और इसे संगीतबद्ध किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। उपाध्याय नगर देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। राजा राम नगर देवास से ही राजू अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल। सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज सनी। जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बबलू वर्मा और कालू भैया। गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल, गोविंद, सालग्राम और दशरथ। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म धनवान का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्यप्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेडियो संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। और मौसम विभाग ने आज भोपाल सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। शाम 6:00 सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर।

रात 8 बजे सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास इज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम खेल जगत में रात 9:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप इस विषय पर प्राची तिवारी की वार्ता।

और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुन सकेंगे रात 10:30 पर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा रानू मजूमदार का राग सरस्वती में बांसुरी वादन। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में विविध कार्यक्रमों के साथ शाम 5:00 मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण डीटीएच

0: नमस्कार। मीडियम वेव 188.2 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत की कुछ बेहतरीन डीपटेक प्रतिभाओं को भारत के बाहर प्रदर्शित करना है। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मेक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रदेशवासियों से बाल श्रम से मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्यप्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। और 10वें आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से हो रही।

0: है भारतीय टीम का मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के साथ होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के खास युववाणी कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना मित्र अनुपम खरे, लेकर आया हूं आज का युववाणी कार्यक्रम। साथियों आज के कार्यक्रम में हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, साथ ही होगी वार्ता और होंगे मनोरंजन के लिए गीत भी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारी इस चर्चा के साथ, जिसका विषय है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जो कि हर साल हम 12 जून को पूरे विश्व में मनाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य बालकों के अधिकारों की रक्षा करना है और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के अवसर प्रदान करना है। बाल श्रम गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और जागरूकता की कमी से उत्पन्न होता है। इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। ILO ने सन 1999 में वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन नंबर 182 को अपनाया था। आखिर बाल श्रम का अर्थ क्या है, जिसे करने के लिए बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, जो उसकी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है, जो उसकी आयु के अनुपात के अत्यधिक कठिन, खतरनाक या शोषणकारी होता है। 5 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चे जब ऐसे कार्यों में संलग्न होते हैं जो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य या विकास को बाधित करते हैं, तो वह बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए कुछ सुझाव भी हैं, जैसे शिक्षा को प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीबी उन्मूलन, गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता, जागरूकता अभियान, लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों से अवगत कराना, कानूनों का सख्त प्रवर्तन, बाल श्रम में संलग्न नियोक्ताओं पर कठोर कार्रवाई, स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी यानी NGO और नागरिक समाज का सहयोग भी जरूरी है। साथियों ये तो थी एक छोटी सी जानकारी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर। साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं वार्ता की ओर, जिसमें वार्ता का विषय है पत्रकारिता में युवाओं की सहभागिता, जिसमें वार्ताकार हैं अरविंद्र प्रजापति। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पत्रकारिता क्षेत्र में रोजगार और विभिन्न कोर्स। आकाश की तरंगों पर आप सुन रहे हैं एक विशेष प्रस्तुति। आज की हमारी वार्ता का विषय है पत्रकारिता क्षेत्र में रोजगार और विभिन्न कोर्स। बदलते समय में पत्रकारिता केवल समाचार पढ़ने या अखबार छापने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह समाज की चेतना, लोकतंत्र की आवाज़ और डिजिटल युग का सबसे प्रभावशाली माध्यम बन चुकी है। आइए इसी रोचक संसार की यात्रा पर चलते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ संवाद की आवश्यकता भी बढ़ती गई। पहले संदेश कबूतरों से भेजे जाते थे, फिर चिट्ठियां आईं, उसके बाद रेडियो, अखबार, टेलीविज़न और अब डिजिटल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक छोटे से मोबाइल स्क्रीन में समेट दिया है। पत्रकारिता समाज का दर्पण कही जाती है। यह केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करती, बल्कि जनता को जागरूक करने, शासन और समाज के बीच सेतु बनाने तथा लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य भी करती है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है, इसमें रोजगार के असीम अवसर मौजूद हैं। यदि किसी व्यक्ति में लेखन क्षमता, बोलने का आत्मविश्वास, जिज्ञासा, रचनात्मकता, समाज के प्रति संवेदनशीलता है, तो पत्रकारिता उसके लिए सुनहरे भविष्य का द्वार खोल सकती है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाचारों, विचारों, सूचनाओं और घटनाओं को विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचाया जाता है। पत्रकारिता

0: के मुख्य उद्देश्य हैं। सूचना देना, जैसे शिक्षित करना, मनोरंजन करना, जनमत तैयार करना, समाज में जागरूकता फैलाना। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती है। जैसे भवन की मजबूती स्तंभों पर निर्भर करती है, वैसे ही लोकतंत्र की मजबूती स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर निर्भर करती है। पत्रकारिता का इतिहास। भारत में पत्रकारिता का आरंभ अंग्रेजी शासन काल में हुआ। भारत का पहला समाचार पत्र हिक्की गजट माना जाता है, जिसे 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत उदंत मार्तंड से हुई, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर ने किया। स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन जैसे पत्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। आज पत्रकारिता प्रिंट से निकलकर डिजिटल और सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार हैं प्रिंट पत्रकारिता, इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मैगजीन शामिल हैं। यह पत्रकारिता का सबसे पुराना रूप है। उदाहरण, दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिकाएं, रोजगार के अवसर, रिपोर्टर, सब एडिटर, फीचर राइटर, कॉपी एडिटर, प्रूफ रीडर। इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, इसमें रेडियो और टेलीविजन शामिल हैं। रेडियो की आवाज़ कल्पना के पंख देती है, जबकि टीवी दृश्य और दोनों संगम प्रस्तुत करता है। रोजगार के अवसर, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, टीवी रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरा पर्सन। डिजिटल पत्रकारिता, आज मोबाइल ही मिनी न्यूज रूम बन चुका है। वेबसाइट, ब्लॉग, यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिजिटल पत्रकारिता का हिस्सा है। रोजगार के अवसर, कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया मैनेजर, डिजिटल एडिटर, यूट्यूबर, पॉडकास्ट होस्ट, फोटो पत्रकारिता। एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। फोटो पत्रकार समाज की घटनाओं को कैमरे में कैद करता है। रोजगार, फोटो जर्नलिस्ट, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर, न्यूज फोटोग्राफर। खेल पत्रकारिता, खेल प्रेमियों के लिए यह आकर्षक क्षेत्र है। कार, मैच रिपोर्टिंग, खिलाड़ी इंटरव्यू, खेल विश्लेषण। फिल्म और मनोरंजन पत्रकारिता, फिल्मी संगीत, टीवी, सेलिब्रिटी जगत से जुड़ी खबरों का प्रसारण। रोजगार, फिल्म समीक्षक, एंटरटेनमेंट रिपोर्टर, एंकर। खोजी पत्रकारिता, यह पत्रकारिता का साहसी रूप है, इसमें छिपे हुए सच को सामने लाया जाता है। कृषि पत्रकारिता, भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों तक नई तकनीकी और योजनाओं की जानकारी पहुंचाना कृषि पत्रकारिता का उद्देश्य है। पत्रकारिता में आवश्यक गुण हैं। पत्रकारिता केवल डिग्री से नहीं, व्यक्तित्व से भी चलती है। यह अच्छे पत्रकार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे कि जिज्ञासा, निष्पक्षता, साहस, लेखन कौशल, भाषा पर पकड़, समय प्रबंधन, तकनीक ज्ञान, संचार कौशल। पत्रकार की कलम तलवार से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। आज पत्रकारिता में रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। समाचार पत्र संस्थान, देश में अनेक बड़े समाचार पत्र हैं जहां पत्रकारों की आवश्यकता रहती है। उदाहरण, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान। समाचार चैनल, टीवी चैनलों में एंकर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर की मांग रहती है। उदाहरण, आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, रेडियो क्षेत्र। रेडियो आज भी ग्रामीण भारत की धड़कन है। विशेष रूप में आकाशवाणी ने सूचना और जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रोजगार, उद्घोषक, रेडियो प्रसोता, स्क्रिप्ट राइटर, कार्यक्रम अधिकारी। डिजिटल मीडिया कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से नौकरियां बढ़ रही हैं। ब्लॉग लेखन, वीडियो कंटेंट निर्माण, सोशल मीडिया हैंडलिंग। सरकारी क्षेत्र, सरकारी विभागों में जनसंपर्क अधिकारी और मीडिया अधिकारी की नियुक्ति होती है। प्रमुख संस्थाएं, प्रेस सूचना ब्यूरो, जनसंपर्क विभाग, दूरदर्शन, आकाशवाणी। स्वतंत्र पत्रकारिता, आज फ्रीलांस पत्रकारिता भी लोकप्रिय हो रही है। लोग घर बैठे ब्लॉग, यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट के माध्यम से आय अर्जित कर रहे हैं। पत्रकारिता में आय, अनुभव, संस्था, कौशल पर निर्भर करती है। शुरुआती स्तर पर इनकम 15,000 से 30,000 रुपये प्रति माह, मध्यम स्तर 40,000 से 80,000 रुपये प्रति माह, वरिष्ठ स्तर पर लाखों रुपये प्रति माह तक लोग अर्निंग करते हैं। लोकप्रिय एंकर और डिजिटल क्रिएटर इसमें भी अधिक कमाई करते हैं। पत्रकारिता से संबंधित प्रमुख कोर्स हैं। अब बात करते हैं उन कोर्स की जो इस क्षेत्र में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, अवधि 3 महीने से 1 वर्ष, विषय बेसिक पत्रकारिता, रेडियो प्रस्तुति, न्यूज राइटिंग। यह शुरुआती विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होते हैं। डिप्लोमा कोर्स, अवधि 1 वर्ष, प्रमुख कोर्स डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, स्नातक पाठ्यक्रम बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अवधि 3 वर्ष की रहती है इसकी, विषय रिपोर्टिंग, एडिटिंग, मीडिया कानून, विज्ञापन, जनसंपर्क। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एमए इन मास कम्युनिकेशन, अवधि 2 वर्ष की रहती है, इसमें पत्रकारिता के उन्नत पहलुओं का अध्ययन कराया जाता है। पीएचडी, जो विद्यार्थी शोध और अध्यापन में रुचि रखते हैं वे पीएचडी भी कर सकते हैं। पत्रकारिता के प्रमुख संस्थान हैं, भारत में कई प्रतिष्ठित संस्थान पत्रकारिता की शिक्षा प्रदान करते हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम है। यह वह दीपक है जो अंधकार से सत्य की रोशनी फैलाता है। आज के युवाओं के लिए पत्रकारिता रोजगार, सम्मान, रचनात्मक अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट क्षेत्र बन चुकी है। आवश्यकता है मेहनत, ईमानदारी और निरंतर सीखने की। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार श्रोताओं।
1: साथियों, अभी हम सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था पत्रकारिता में युवाओं की सहभागिता, जिसमें वार्ताकार थे अरविंद प्रजापति।
2: साथियों, जैसे हमें विदित है कि आजकल के बच्चे मोबाइल की लत के कारण बहुत सी समस्याओं में फंस रहे हैं। इसी से जुड़ी आज की हमारी दूसरी चर्चा है मोबाइल की लत विषय पर। मोबाइल की लत के कारण लोग अपना कीमती समय सोशल मीडिया, गेम और रील्स देखने में बर्बाद करते हैं। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में कमजोरी, सिर दर्द और गर्दन में दर्द जैसी समस्याएं होने लगी हैं। फोन से अधिक चिपके रहने के कारण अनिद्रा यानी नींद न आना, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक बीमारियां पनपने लगी हैं। जैसे देखा जाता है कि छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है और वे किसी भी कार्य में ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसके आदि लोग वास्तविक दुनिया और परिवार से दूर होकर आभासी यानी डिजिटल दुनिया में सिमट जाते हैं। लोग बाहर खेलने या व्यायाम करने के बजाय घर में बैठकर फोन चलाना पसंद करते हैं, जिससे मोटापा भी बढ़ता है। यानी हम खुद ही अपनी समस्याओं को न्योता देते हैं। जब फोन पास न हो या इंटरनेट बंद हो तो व्यक्ति गुस्से या बेचैनी का अनुभव करने लगता है। सड़क पर चलते हुए या वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने से जानलेवा दुर्घटनाओं का जोखिम भी बढ़ जाता है। काम या पढ़ाई के दौरान बार बार नोटिफिकेशन चेक करने की आदत से उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। मोबाइल एक उपयोगी उपकरण है, लेकिन इसे खुद पर हावी न होने देना और सीमित उपयोग करना ही समझदारी है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी हमारे मोबाइल की लत विषय पर।
1: साथियों, अब ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा मधुर गीत।

साथियों, अभी हमने जो ये गीत सुना ये था फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से, जिसमें गायक थे कमाल खान, गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था जतिन ललित ने। साथियों, बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे और लेकर चलते हैं आपको इस चर्चा की ओर, जिसका विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI ने तकनीकी दुनिया में एक अभूतपूर्व क्रांति ला दी है, जिससे जटिल समस्याओं का समाधान आसान हो गया है। उद्योगों और व्यवसायों में AI के उपयोग से उत्पादकता बढ़ी है और ऑटोमेशन के जरिए कार्यप्रणाली अधिक तेज हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में AI आधारित टूल्स छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षण यानी पर्सनलाइज लर्निंग और त्वरित सहायता प्रदान कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में AI की मदद से बीमारियों की सटीक पहचान, रोबोटिक सर्जरी और नई दवाओं का अनुसंधान बहुत तेजी से हो रहा है। हमारे दैनिक जीवन में AI आधारित वर्चुअल असिस्टेंट जैसे एलेक्सा, सिरी और स्मार्ट होम उपकरणों ने जीवन को बेहद सुविधाजनक बना दिया है। सेल्फ ड्राइविंग कारों और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ने परिवहन को अधिक सुरक्षित और सुगम बना दिया है। बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में AI धोखाधड़ी का पता लगाने और जोखिम का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं साथियों, AI ने तकनीकी नौकरियों के नए अवसर पैदा किए हैं। वहीं पारंपरिक

के स्वरूप में भी भारी बदलाव आया है। एआई के बढ़ते प्रभाव के साथ ही डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और गलत सूचनाओं के प्रसार जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। साथियों, यह तकनीक मानव जीवन को असीमित संभावनाओं की ओर ले जा रही है, लेकिन इसका संतुलित और नैतिक उपयोग ही भविष्य की सफलता है। साथियों, ये थी हमारी छोटी सी चर्चा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के विषय पर। साथियों, लेकर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा मधुर गीत।

संगीत जिसमें गायक थे अखिल सचदेवा और मनशील गुजराल। इसमें गीतकार थे अखिल सचदेवा और संगीत से भी सवारा था अखिल सचदेवा ने। साथ ही अब जाते जाते दे देते हैं आपको रोजगार सूचना भी। यूपी ट्रिपल एससी योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है जिसमें पद का नाम है यूपी ट्रिपल एससी आबकारी कांस्टेबल, जिसमें पदों की संख्या है 722। आयु सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। इसकी शैक्षणिक योग्यता है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 का वैध स्कोर कार्ड और भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं यानी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी www.uptrisc.gov.in पर विजिट भी कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपने मित्र अनुपम खरे को। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये वक्त है छोटे से अंतराल का।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत कलंक फिल्म से लिया है, जिसे गाया अरिजीत सिंह ने। अमिताभ भट्टाचार्य के बोलों को संगीतबद्ध किया प्रीतम ने।

अगला गीत लिखा जावेद अख्तर ने, शंकर एहसान लॉय ने इस गीत की धुन बनाई है। फरहान अख्तर का गाया हुआ ये गीत हमने लिया रॉक ऑन फिल्म से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत लिखा है कुमार ने। बादशाह फजील पुरिया और शुक्रिति का की आवाजें हैं। कपूर एंड सन्स फिल्म से इस गीत को लिया है संगीत अमाल मलिक का।

तनु बेट्स मनु फिल्म का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, शफाकत अमानत अली की आवाज में। राजशेखर ने इस गीत को लिखा है, धुन तैयार की कृष्णा ने।

तनु वेड्स मनु इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे शफाकत अमानत अली को। राज शेखर ने इस गीत को लिखा था, संगीत तैयार किया था कृष्णा ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को लीस में भारत इनोवेट्स का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन के दौरान भारत की नई पीढ़ी के नौ प्रवर्तकों, व्यवसाय जगत और वैश्विक जरूरतें पूरी करने वाले अनुसंधान समाधानों का प्रदर्शन किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र आईटीआई परिवर्तन के लिए रणनीतिक परामर्श सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य में 3 दिवसीय जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रदेशवासियों से बाल श्रम से मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि हमारी सरकार बच्चों के हितों और शिक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्यप्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। 10वें आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से हो रही है। भारतीय टीम का मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के साथ होगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओं, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद

0: सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
1: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
0: जी,
1: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
0: जी,
1: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
0: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
1: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
0: जी,
1: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
0: जी,
1: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
0: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
1: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
0: जी,
1: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
0: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
1: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
0: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
1: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
0: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
1: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत

0: पूजा है प्रभु की,
1: मेहनत थी पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चीटी,
1: हमको यही सिखाती चीटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
5: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है।

0: आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। हम आपको सुनवा रहे हैं दाग फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगला गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई SD बर्मन ने, लता मंगेशकर की आवाज है और इस गीत को हमने लिया अभिमान फिल्म से।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में अगला गाना लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीत तैयार किया शंकर जयकिशन ने, फिल्म का नाम सूरज।

शारदा फिल्म का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, धुन तैयार की सी रामचंद्र ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये वक्त है छोटे से अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सेना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों

0: पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार अब से कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के में प्रसारित किया जाएगा। भारत एआई मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय शाम के 7:05 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए पहले डालते हैं एक नजर इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से ग्राम सभा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, जिसमें आज आप सुनेंगे आपकी पार्टी आपके फिल्मी गीत। साथ ही साथ सुनेगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर स्थल रिकॉर्डिंग आधारित विशेष कार्यक्रम। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास, ये कार्यक्रम होगा आज रात 8:00। 8:35 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। कुछ और नगमे हम आपको सुनवाएंगे 9:45 पर और रात 10:00 कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। 9:30 खेल जगत में सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग कोच नेहा कश्यप से मनीष गजवीय की बातचीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज रात 10:30 आप सुन सकते हैं रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नजर कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आपको बता दें आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम कल सुबह 7:21 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम होगा, जिसमें समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां गीत संगीत और समय के साथ सुरमई सवेरा फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:30। आभा खरे के गाए बुंदेली लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे 9:15 पर कार्यक्रम लोक संगीत में। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में सुबह 9:30 सुनिएगा पद्मश्री से अलंकृत वरिष्ठ पुरातत्व विद डॉक्टर नारायण व्यास से अमिता त्रिवेदी की विशेष बातचीत। 10:00 आप सुन सकते हैं जिले की चिट्ठी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सागर, इसका समय 10:05। सुबह 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग माला में सुनिएगा राजा काले का ख्याल गायन। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा में आप सुन सकते हैं बुंदेली लोकगीत। 7:45 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। ये सभी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। अब डालते हैं नजर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, इसका प्रसारण होगा सुबह 11 बजे। 12 बजे आपकी फरमाइश संग्रहालय से, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 12:30 बजे सुनिएगा जंग लगी तलवार, इसका भाग 8। दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी रीवा की ही प्रस्तुति में 1:30 बजे सुनिएगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं दोपहर 2 बजे, शाम 5:33 और शाम 6 बजे। कुछ और फिल्मी नगमे सुनवाएंगे दोपहर 2:30 पर, कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, इसे आप सुन सकते हैं कल रात 8 बजे। कल का विषय है अष्ट लक्ष्मी। 8:35 पर फिल्म संगीत, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10 बजे सुनिएगा यूएस प्रसाद का कर्नाटक सैक्सोफोन। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को किया खारिज। और केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।

0: वैष्णवी।
1: प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में खेती में महिलाओं खासकर माताओं और बहनों की भूमिका पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
2: महिलाओं की भागीदारी और कैसी बढ़े, युवा कैसे खेती की तरफ आकर्षित हो और नई तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादन कैसे बढ़ाएं और किसानों की आजीविका कैसे सुनिश्चित करें, आय और बढ़े। एक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना मतलब भरपूर अन्न लोगों को भोजन के लिए प्राप्त हो और अन्न भी ऐसा हो पौष्टिक आहार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत की कुछ बेहतरीन डीपटेक प्रतिभाओं को भारत के बाहर प्रदर्शित करना है, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा चुना गया है। उन्होंने बताया कि 1200 से अधिक स्टार्टअप्स में से 13 क्षेत्रों में 120 से अधिक डीपटेक स्टार्टअप्स का चयन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वो चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में प्रदेश में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भरता और जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ और खंडवा जिलों में भी सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर आज से जन कल्याण शिविर शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। प्रदेश के दक्षिणी जिलों में 17 से 18 जून के बीच मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने आज एक बैठक में एमएसएमई उद्योगों के संवर्धन, जिला स्तर पर आने वाली कठिनाइयां और उनके निराकरण आदि पर चर्चा की। राजगढ़ जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। शहडोल जिले में 14 जून को ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सागर जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 28 से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। महाराजा छत्रसाल की जयंती के अवसर पर छतरपुर जिले में लोक गायन, लोकनाट्य और संगीत पर केंद्रित विरासत महोत्सव का आयोजन 17 और 18 जून को किया जा रहा है। गुना कलेक्टर ने आकाशवाणी के भ्रमण के

दौरान कहा कि आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता, सटीकता और जन सरोकारों से जुड़े प्रसारणों के कारण लोगों के बीच विशेष स्थान बनाए हुए है। शहडोल संभागायुक्त ने वीरपुर से श्योपुर तक रेलवे लाइन का कार्य शीघ्रता से पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में अग्नि सुरक्षा, सुरक्षित निकासी मार्ग और लाइसेंस संबंधी नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम में

24वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैतूल वृत्त कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। उज्जैन संभागायुक्त आशय सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंदसौर जिले में मानसून और संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। श्री राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने में मदद की। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीय वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया गया। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सब भैया बहनी का पूजा बहनी की राम राम। सुनिए भैया बहनी, हम पंचे इहन उहन आवत जात कई एक जगह छोट छोट लड़कन के काम करत देखत रहे थे। जैसन होटल होएगा, बस स्टैंड होएगा, रोड में होएगा, रेलवे स्टेशन, दुकानन मा, माने कई एक स्थानन में बाल श्रम देखे का मिलत है। जहाँ छोट लड़का कहाँ बर्तन धो रहे हैं, कहाँ पानी ढो रहे हैं, कहाँ लकड़ी कंडा काट रहे हैं, और कहाँ गाड़ी के टायर बदल रहे हैं, पंचर बनाए रहे हैं, साफ सफाई के काम कर रहे हैं, और कहाँ भीख मांग के कमाए खाए रहे हैं। जोने उम्र माँ लड़िकन के हाथे किताब पोथी हो चाहे गेंद खिलौना होए, वह हाथे माऊ अपने उम्र से ज़्यादा मेहनत वाला काम कह रहे हैं। जोने उम्र माऊ नहीं स्कूल में हो चाहे, वह उम्र माऊ रोजी रोटी के तलाश माँ इहन उहन भटकत दिखाते। और अपने समाज के लोग लड़िकन के बाल श्रम लड़िकन से बाल श्रम करवावत हैं। लड़िकन के माता पिता उनसे काम करवावे लागत हैं कि गरीबी है, खर्चा नहीं चलाए पाए रहना, तो घर के लड़िका का काम करावे ले जाए थे। जबकि देखिए यहाँ निकही बात ही न हो। आज जो सुनइए भैया बहनी, यह बात ही हम ऐसे कह रहे हैं कहे कि आज आए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, और यह दिवस हर साल 12 जून का मनावा जाता है। कहा जाता है कि आज के लड़िका जो है वो देश के भविष्य ही, समाज के भविष्य ही, हम सब के देखिए यह दायित्व तो है कि उन्हीं निकहा के पाली पोसी, निकही शिक्षा संस्कार दी जो ने उनके सुनहरा भविष्य के निर्माण के खातिर मजबूत आधारशिला बनी सके। सुनइए भैया बहनी, बाल श्रम अमानवीय और गैर कानूनी है। बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त के दिन आए, जोने का पहल बेर 2002 में शुरू किया गया रहा है। जोने के उद्देश्य बाल श्रम

0: करों के थाम के खातिर जागरूकता और सक्रियता का बढ़ाव है। संयुक्त राष्ट्र महासभा बाल श्रम की व्यापकता का स्वीकार करत की सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कीनगा जोने माह 2021 का बाल श्रम उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित कीनगा। बाल श्रम रोके के प्रयास कीनगा यह दिवस सरकारन संस्थानीय अधिकारियन नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक और नियोक्ता संगठनन का एक साथ लियावत है जो ने बाल श्रम के समस्या का उजागर कीन जा सके और बाल श्रमिकन के सहायता के खातिर दिशा निर्देश निर्धारित कीन जा सके। सुनिए भैया बहनी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आंकड़न के अनुसार विश्व भर में करोड़न बिटिया लड़िका जैसन काम में लगे हैं जौन उन्हें पर्याप्त शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन और बुनियादी स्वतंत्रता से दूर रखा है। यह मेरे से उनके अधिकारन के उल्लंघन होते है। यह मेरे से आधे से अधिक जो बच्चा हैं वो बाल श्रम के सबसे बुरे रूप के शिकार हैं जैसन के खतरनाक वातावरण में काम करब गुलामी या कि जबरन श्रम करवाओ मादक पदार्थन के तस्करी वेश्यावृत्ति जैसन अवैध गतिविधियां साथ है सशस्त्र संघर्ष में भागीदारी शामिल है। सुनिए भैया बहनी जो बाल मजदूरी को रोके के खातिर और लड़कन के अधिकारन के रक्षा करे के खातिर कई एक मेरे के कड़े कानूनी प्रावधान लागू किए गए हैं। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम या कानून 1986 में लागू किए गए रहा है जो उन 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चन का खतरनाक उद्योगन और प्रक्रियन में काम करे से पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र वाले कोनो लड़कन का कोनो खतरनाक कारखाना या कि खदान में काम करे या कोनो दूसर खतरनाक रोजगार में नहीं लगावा जा सके। सुनिए भैया बहनी यह दिवस के मुख्य उद्देश्य दुनिया भरे में बाल श्रम के स्थिति में ध्यान केंद्रित कर और बाल मजदूरी का पूरी तरह से समाप्त करे के खातिर आवश्यक कदम उठाओ है। यह दिन सरकार नियोक्ता नागरिक समाज के साथ साथ आम जनता का बाल श्रमिकन के दुर्दशा का उजागर करे और उनकर मदद करे के खातिर एकजुट होए के अवसर प्रदान करत है। बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण के खातिर हमहू पंचे अपन योगदान दी कोनो बच्चन का कहाँ काम करत देखी तो ओकर सूचना स्थानीय श्रम विभाग या संबंधित अधिकारी का दे चाहिए। गरीब बच्चन के शिक्षा में सहायता करे चाहिए या सामाजिक बुराई के प्रति अपने आस पास के लोगन और समुदाय में जागरूकता फैलावे चाहिए या मेरे से लड़कन के हंसत खेलत बचपन उन्हें हम पंचे लौटाई और देश समाज के भविष्य का नई दिशा कहित ले जाए के मने एक अच्छा प्रयास करें और अपने घर गांव के लड़का बच्चन का निकही शिक्षा निकही संस्कार दे जो उन्हें आगे चल के वो देश के बहुत अच्छे नागरिक बन सके।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प
3: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर
4: 8700001-4242।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

सुनिए भैया बहनी, अबे सज्जनी या लोग भजन सुनत रहे जो ने कगावत इतनी संगीता तिवारी और देखी इतनी साहित मनिमास लगा है। जहाँ तहाँ लोग तीर्थ व्रत जाए रहे हैं और भगवान के दर्शन कह रहे हैं, साथे मनोरंजन कह रहे हैं, साथे एक जगह से जब मनी दूसरे जगह जात है तो उन के बारे में, उन के रीति रिवाज सभ्यता के बारे में मनी जानत है, कुछ सीखत है और बहुत निक लागत है सिनेमा है। और जब मनी को कबहू मतलब कौनो नया काम शुरू करत है तो गणेश जी का सबसे पहले याद करत है, काहे कि वो विघ्नहर्ता यहीं सगले दुख का सगले संकट का दूर करे वाले भगवान हैं। और सुनिए भैया बहनी, एक ठे हमारे लगे सूचना है, तो वह सूचना हम अपना पंचन का बतावे जा रहे हैं। देखिए एक ठे सूचना सुनी, यह सूचना योग संगम पोर्टल से है। बढ़ावे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर में आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून 2026 का देश भर में योग संगम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और यह पहल के उद्देश्य जो है वह योग का जन जन तक पहुँचाव है और साथ है स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाओ है। सुनिए भैया बहनी, यह शैक्षणिक संस्थान, स्वायत्त निकाय, सामुदायिक संगठन, योग संस्थान और दूसर इच्छुक संस्थान अपने स्तर में योग संगम कार्यक्रम आयोजित करके यह अभियान से जुड़ सकते हैं। कार्यक्रमन के पंजीकरण और दूसर आवश्यक जानकारी के खातिर योग संगम के जो पोर्टल है ओकर साइड है HTTP योगा डॉट आयुष डॉट जीओवी डॉट इन योगा संगम के अवलोकन किए जा सकते हैं। यह मेरे से यह सूचना समाप्त है। और देखिए आज हुआ है शुक्रवार और अपना पंचेता के हो कि हम आज अपना चौका लेके आऊ जहाँ हम अपना पंचन का स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन लेके हाजिर हुई थे और अपना पंचन के साथ शामिल करे थे। तो चलिए आज चला जाए अपने चौका कहित, आज हम का लेके आए हैं और का बनाए रहने। तो सुनिए भैया बहनी, आज हम चना और गुड़ के मिठाई बनबे अपना पचक बताऊ। चना जो भुना चना आवत है ओकर, चना में बहुत एक का आयरन कैल्शियम होते है जो कि शरीर का ऊर्जा प्रदान करत है, ताकत देत है। ता एक बनावे के खातिर

का सामग्री चाही कैसन बनावक है, तो चलिए हम पंचे चली अपने चौका कैत और एका बनाई। तो सुनिए भैया बहनी, सबसे पहले अपना का 200 ग्राम भुना चना ले लेक है और एकर छिलका निकाल देख है, हाथे से मीज दे कि कपड़ा में धई के मीज दे, तो जो ऊपर के छिलका है वो निकल जाए और फिर ओका फटिक के पूरा छिलका निकाल के निकाह के आओ एमाहे, यदि अपना के लगे काजू है 8-10 थे तो 8-10 काजू, 8-10 बादाम हो तो ले ली, थोर का 1 कप भरे से मखाना ले ली और आधा कप नारियल का बुरादा। यदि अपना के लगे बाजार वाला बुरादा है तो ठीक है, यदि बाजार वाला नहीं है तो अपने घर में नारियल तो रहती नहीं, ओका गोरी के ले लेक है। अब जौन ये चना है मखाना है और उसके साथ ही हाँ चना और मखाना का एक निकाह के बढ़िया पीस लेक है आओ जो काजू बादाम है ओका दर दर पीस लेक है, एक महीन नहीं करेगा। अब इनका सबका मिला ले और इमें थोड़ का इलायची पाउडर डाल दे। अब यह जो हम पंचे चना का पीस ही डाले हैं एमा है एक कटोरी मतलब 150 ग्राम तक गुड़ का कूच के अब एक कढ़ैया का चढ़ा दे और कढ़ैया में गुड़ डाल दे और आधा कप पानी डाल दे और थोड़ा 1 चम्मच घी अब एक डाल के एक चलावत रह। जब गुड़ पिघल जाए और एमा एक आध दो तीन उबाल आ जाए ये बल के लागे तब गैस का बंद कर देखे और गैस में दूसर कढ़ाई चढ़ाए के गैस चालू कर के आँच में चूल्हा में जहाँ अपना बनाई थो जाऊने में, अब तक गैस गाँव गाँव हर जगह तक पहुँच चुकी है, ता दूसर कढ़ाई चढ़ाए के एमा 1-2 चम्मच घी डाल के जो पिसा चना रखे हैं वह का डाल के एक भून दे और जब ये निकाह भुजर जाए एम से सोंध सोंध महक आवे लागे तब एमा गुड़ मिला के और एक धीमी आँच में चलावे के रहते आँच नहीं बंद करे का है धीमा आँच का धीमा करके और फिर का मिक्स करे है और फिर जब यह चलावे चलावे तो गाढ़ हो लागे जे कढ़ैया छाड़े लागे जब हलवा जैसन हो लागे तब कढ़ैया से एक निकाल के एक टाठी माहें घी लगाए के हैं आओ जो चना गुड़ के बर्फी हम पंचे बनाए हैं एक निकाह के फैला दे। अब एक के ऊपर अपना काजू बादाम छोट छोट कह के काट के डाल सके थे नारियल के बूरा थो कैसे ऊपर ऊपर धुरू के दे और फिर जब ये जम जाए तो एक का बढ़िया काट के डिब्बा भर के धैले या अपना के सकारे साँच खाए खातिर चना गुड़ के बर्फी तैयार है। यह बहुत पौष्टिक होती बहुत फायदा करती और यह तो बर्फी या यदि अपना मान ली बर्फी नहीं बनावे चाहता है तो एक अपना लड्डू जैसन बनाए सकित हैं तो एकर लड्डू गलाए बन सकत है और ये देखी ये अपना के सवेरे साँझ एक ठे लड्डू एक ठे मिठाई मैं नहीं खा ले और देखी जो यह भूजा चना होते है एमा प्रोटीन फाइबर आयरन और कार्बोहाइड्रेट के अच्छा स्रोत है। यह वजन घटावे में मदद करत है और शुगर का नियंत्रित करत है, पर शुगर के मरीजन का बहुत एक का नहीं खाए के माना कि गुड़ डारा है तो थोड़ा बहुत खाए खे नहीं कि फिर गुड़ डारा है चना है तो एकदम का फायदा करी तो हम खा ली ऐसा नहीं है। एक अलावा यह देखिए पाचन का निकाह बनावत है शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ावत है और देखिए यह प्रोटीन के अच्छा जो विकल्प है ऐसे मांस पेशी की मरम्मत होती और दिन भर का मनई कनी कहीं ताकत मिलती थी। भुना चना में मैग्नीशियम और फाइबर कोलेस्ट्रॉल का कम करत है रक्तचाप माने बीपी का नियंत्रित रखत है साथ है आयरन एमा बहुत एक का होते हैं ऐसे या शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर का बढ़ावत है और ऐसे का होते हैं कि शरीर में खून की कमी नहीं हो पावती है। तो यह मेरे से हम पंचे अपने घर में ऐसे कुछ पौष्टिक पौष्टिक और स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन मिठाई पकवान बनावत रही। देखिए बाजार से कहाँ ले कर नहीं रहे चना मनई के घरे में रहा थे गुड़ मनई के घरे में रहा थे हाँ बनवे के थोका तरीका मनई चना गुड़ तो खाते चना के साथ गुड़ हम पंचे खाई थे चना का फूले के खाई थे चना का भूज के खाई थे एहन के थोका मनई दूसरी विधि से बनाए दी तो सामान वह रहा थे बनवे के मनई तरीका बदल देते और फिर वह दूसर व्यंजन बन जाते और दूसर होकर ना हो जाते। अब चलिए एक थे और सूचना ऐसे ने प्रपंचन का फिर से सुनाई सुनिए भैया बहनी एक थे सूचना सुनी। यह सूचना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड माने आयुष मंत्रालय द्वारा बढ़ावे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 14 जून 2026 का सवेरे 6:15 से 7:35 तक एक थे विशेष ऑनलाइन योग सत्र आयोजित किए जा रहा है।
यह अवसर में एक साथ बहुत लोगन के सहभागिता के माध्यम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करे के प्रयास कीन जाई। सुनइए भैया बहनी, यह कार्यक्रम में भाग ले के जौन इच्छुक नागरिक है जे में भाग ले चाहत है वह टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 नंबर एक बार अपना पंचे और सुन ले 1800-315-7008 में मिस कॉल करके अपन पंजीकरण कराए सकित है। पंजीकरण के बाद प्रतिभागियन का व्हाट्सएप में संदेश के माध्यम से सत्र के लिंक भेजा जाए और प्रतिभागियन से अनुरोध है कि अपने व्यक्तिगत मोबाइल या कि दूसर उपकरण के माध्यम से निर्धारित समय में योग सत्र में शामिल हो सकते हैं। यहाँ दूसर उपकरण से मतलब जैसे कोई के पास टेबलेट है या कंप्यूटर है लैपटॉप है उनसे संपर्क कर सकते हैं। यह मैं से ये सूचना समाप्त।

सुनैया भैया बहनी, अब है सब जने या भोला बाबा के गीत सुनत रहे, जो ने का गावत रहे हैं चंद्रशेखर शर्मा। और देखिए सूर्य माँ, जब हमारे अपना के चर्चा होत रही है, तो लड़का बच्चन के बारे में हम बच्चे बात करते रहें, तो देखिए सुनैया भैया बहनी, छोटके लड़कन बिटियन के सुरक्षा बहुत जरूरी है भाई। आए दिन हम पंचे देखी सुनत रहे थे, देखत रहे थे, टीवी में देखे थे, समाचार पत्र में सुने थे कि अपने रिश्तेदारी नातेदारी गांव घर में हम पंचे देखा सुनत रहे थे कि कैसन बच्चा चोरी हो रहे हैं, घर से बहरे खेलेंगे निकरे और फिर घर घरे लौट के नहीं आए, और वहीं से उठाई के लेंगे को जानी कहाँ ले जा रहे हैं, बाल मजदूरी करवाए रहे हैं, उन्हें बेच रहे हैं, या कि कोनो कमाई में लगा देते हैं, कारखाना में लगा देते हैं, उनसे काम ले लागत हैं। कबो कबो घरे गांव में लड़कन का डरवाए धमकाए के उनसे काम करावा जाते हैं, उनके शोषण किन जाते हैं, बिटियन के साथ अन्याय शोषण किन जाते, और उन्हें डराए धमकाए के मारे के धमकी दी जाती कि कहू से घरे में जाए के बताए ना। लड़के बिटिया बेचारे डेर के मारे काहू से कुछ नहीं कह पावे, पर पूरे सहमे के रह जाते और शोषण के शिकार होत रहते। ता सुनैया भैया बहनी, बच्चन के सुरक्षा के खातिर बाल अधिकार संरक्षण के गठन किए गए है। एकर मुख्य उद्देश्य जौन है वह बच्चन के अधिकारन के सुरक्षा संरक्षण और संवर्धन करब है। अपने भारत में ही कानूनी रूप से लागू करे के खातिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग माने NCPCR और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग SCPCR के गठन किए गए है। सुनिए भैया बहनी, बाल अधिकार वह बुनियादी मानवाधिकार है जो 0 से लेके 18 वर्ष तक के हर लड़का के विकास और सम्मान की खातिर आवश्यक है। उन्हें मुख्य रूप से 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहले में है जीए के अधिकार, माने नाम और पहचान और उचित स्वास्थ्य सुविधाएं हैं एक के अंतर्गत। दूसरा है विकास के अधिकार, एवं शिक्षा प्राप्त करे के खातिर जो उन अधिकार पोषण और खेले के अवसर दिए जाते हैं। तीसरा है संरक्षण के अधिकार के तहत शोषण दुर्व्यवहार बाल श्रम और तस्करी से सुरक्षा उन्हें दी जाती है। चौथा भागीदारी के अधिकारन अपने विचार व्यक्त करें और स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार है। सुनिए भैया बहनी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कुछ मुख्य काम हैं के सब सरकारी कानून नीति बाल अधिकारण के अंतर्राष्ट्रीय और संवैधानिक मानक के अनुरूप हों, बाल अधिकारण के उल्लंघन के शिकायतन के जांच करब और आवश्यक कानूनी कदम उठाओ, बच्चन के खिलाफ होए वाले अपराध जैसन के बाल श्रम बाल विवाह और यौन शोषण के मामलन का तुरंत समीक्षा करब। यदि बाल अधिकारण के उल्लंघन बच्चन के अत्याचार और शोषण से जुड़ी कोनो शिकायत दर्ज करवावे चाहित हन, ता हम ही पंचन का चाहिए कि यह संपर्क कर सकित हैं ई बाल श्रम ई बाल निदान मा, और आम जनता के खातिर बच्चन के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित शिकायत दर्ज करवावे के खातिर एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल है जो NCPRC पोर्टल में उपलब्ध है। पास्को जोन पाक्सो है ई बॉक्स बाल यौन शोषण से जुड़े मामलन का सीधे रिपोर्टिंग के खातिर पाक्सो ई बॉक्स के उपयोग किए जा सकत है। और एमा जैसे मान ली कबो कबो का होता है कि केहू के साथ कोनो मेर के घटना घटी गए, अब ऊ रिपोर्ट करे से डरात हैं कि रिपोर्ट करे जाब तो सबतर बात फैल जाई, चार जगह नामोजी हुई बदनामी हुई, यह डर से कबो कबो लोग रिपोर्ट नहीं करे जाता है कि हमारे घर परिवार के हमारे बिटिया लड़कन के बदनामी हुई, फिर आगे उनका भविष्य का हुई। तो एमा का है कि यहाँ पाक्सो एक्ट वाला ये जो हम बता रहे हैं ना, एमा अपना जई यहाँ सब जानकारी गुप्त रखी जाती है, केहू के नाम नहीं लिन जाता है, केहू का उजागर नहीं किन जाता है, और अपना के सब जानकारी इनका बंद मतलब गुप्त तरीके से अच्छे से सुलझावा जाता है। ता

एके अलावा कोनो आपातकालीन स्थितिमा अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन और बाल विकास मंत्रालय के हेल्पलाइन 1098 संपर्क कीन जाए सकत है। यमे से हम पंचे बाल संरक्षण में अपन योगदान दे के लड़कन के बचपन वापस लौटाए के उन्हें दोबारा हंसी खुशी उनके चेहरे में वापस ले। और एक बात हम ये कहा कि देखी जैसा माता पिता हैं कि लड़कन का डरवावत है मारत धमकावत है, तो वो जब बाहर उनके साथ कोनो घटना होती जैसे मनी बात बात में लड़कन का डांटत रहत है, कबो कबो जो कुछ हो जाते थपड़ी आयु देते हैं, ऐसे कारण थे कि लड़का बच्चा खुल के बाप मतारी से बोल नहीं पावता है। तो उनके साथ जब कोनो बाहरी घटना हो जाती कोनो मेर के, तो वो फिर घरे में बतावे से डरा थे कि जो घरे में बताओ तो घर वाले हमका मरी ही डटी, यह डर के मारे बेचारे वो नहीं कह पावता है। तो ऐसे हम पंचे अपने लड़का बच्चन के साथ ऐसन बनाए के राखी, उन्हें ऐसन माहौल दे कि यदि बाहर उनके साथ कोनो मेर की घटना हो रही है, कोनो मेर के शोषण हो रहा है, तो आए के निर्भीक रूप से निडर हो के वो घर में अपने माता पिता से बता सकें कि हमारे साथ ही मेर की घटना हो रही है। तो ऐसे है जो हम बच्चे अपने लड़का बच्चन की सुरक्षा कैसा कि उनके चेहरा के हंसी मुस्कुराहट बनाए रही, जो इसे हंसत खेलत आगे कई बढ़ें।

सुनइए भैया बहनी, अबे सज्जन ये गैल हाय सुनत रहें जोने का गावते हैं रंजना तिवारी। और देखिए इत्तीदार आंधी तूफान खूब आए रहा है, तो जब आंधी आवत थी तो छुटकाए लड़कों ने दौड़े थे बगीचा कहती आमा बिने के खातिर जामुन बिने के खातिर। तो ऐसने आंधी तूफान मन लड़कन के भेजे का है ना खुद जाए का, जब आंधी तूफान शांत हो जाए तब मने ये आमा बिछा तरी जाए। मान ली कि कौनों डरा उरा टूट पड़े लड़कन के ऊपर गिर पड़े तो कौनों मेरे के खतरा मने के मोल नहीं लेकर, और ये आंधी तूफान में घर से बाहर नहीं निकल गए। कहे कि जब आंधी चले लागत थी तो कहाँ से कुछ उड़ के टूटत रहते गिरत रहते केहू के ऊपर कुछ लग सकत है। तब ऐसे मने का सावधानी रखे है। और देखी हले बोलते बतात कब टाइम हो गया चले के मने का पता ही नहीं चला। और अब हो गई चले के बेरा। तो अपने पंचे अपने स्वास्थ्य के ख्याल रखी, गर्मी में है अपने स्वास्थ्य के ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी और स्वस्थ रही मस्त रही। अब हो गया चले के बेरा, ते देवी विदा। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सब भैया बहनी का पूजा बहनी की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा

साथ में धरातल पर उतारा गया। उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर की आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो

कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहां परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो वहां लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्न एज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति पड़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया। उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की जीडीपी में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर के कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रोक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म

0: जैसा मैंने कहा, ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी ये शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंदन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म की ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है, और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिये, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए, और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे, उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सब के प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोडमैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से जैसा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को

तो आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है। गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, उस सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये

0: सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या है, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा और न केवल भारत के प्रति, अपितु भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंजनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया, जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का

0: हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की। अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर कहा कि श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े। जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सके, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे, क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है, और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़कर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे।

0: की जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
1: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने हैं। एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा, या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों के भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थे। अब जब परिस्थितियां बदल गई, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसे संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
0: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
1: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा क्या भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
0: कहते हैं नील गगन में सांध तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है।

0: आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपकी परछाइयां फिल्म से लिया है। लता मंगेशकर की आवाज है। राजू मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा। संगीत मदन मोहन का।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए आपकी कसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, वक्त है अंतराल का।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार केरल माहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार।

0: experience in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons US Charge d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतनव्वे शोबों में ख्वातीन की क़यादत वाली तरक्की को मजीद मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तहत मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शार्जे डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाजों पर अमरीकी बहरी फोर्सेज के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। सियोल में एक अदालत ने जनूबी कोरिया के साबिक सदर उन सुक यूल को शुमाली कोरिया में ड्रोन कार्रवाई करने और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के लिए 30 साल कैद की सजा सुनाई है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के ख्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इस बात को उजागर किया कि मालियाती शमूलियत और एंटरप्रेन्योरशिप से तालीम, हिफ्ज़ान सेहत, सफाई सुथराई, मकानात, खेलकूद, साइंस और हुक्मरानी तक ख्वातीन तमाम मुतनव्वे शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उभरते हुए शोबों जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी में ख्वातीन की बढ़ती हुई शराकत मौके के नए दर खोल रही है और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे की काया पलट कर रही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पिछले 12 बरस में एनडीए हुकूमत ने ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की को मजीद बढ़ाने के लिए काम किया है और ये सभी शोबों में नुमाया है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुपों को सरगर्म ताउन दे रही है जो ख्वातीन को माली एतबार से आजाद बनाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने भारत की नारी शक्ति के साइंस, खला और इख्तिरात जैसे शोबों में नुमाया होने वाले असरात पर खुशी का इजहार किया। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तहत मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। जनाब शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग के दौरान उन्होंने हिदायत दी कि मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों की मुश्तरक कोशिशों के साथ यात्रा के पूरे रास्ते पर नाकाबिले तस्खीर कसीर सतही सिक्योरिटी ग्रिड की तामीर की जाए। वजीर मौसूफ ने जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी और जदीद तरीन निगरानी के निजामों को वसी पैमाने पर इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी के पूरे फ्रेमवर्क को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर दाखला ने कहा कि यात्रियों के रजिस्ट्रेशन, रिहाइश, सेहत की देखभाल से मुतालिक खिदमात, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और तमाम दीगर जरूरी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए खातिर खा इंतजाम किए जाएं। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कौमी सलामती के मुशीर अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के डायरेक्टर जनरलों ने मीटिंग में शिरकत की। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को खत्म होगी। وزیر اعظم نریندر مودی یورپ کے دو ملکوں فرانس اور سلوواکیا کے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت 14 جون کو فرانس کے شہر نیس کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کا یہ دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سال فروری میں فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی عالمی کلیدی شراکت داری کا درجہ عطا کرنے کے بعد صدر ایمینول میخاں کے ساتھ جناب مودی کی یہ پہلی دو طرفہ ملاقات ہوگی۔ جناب مودی نیس سے سلوواکیا روانہ ہوں گے، اس کے بعد وزیر اعظم جی سیون چوٹی کانفرنس کے لیے فرانس کے

0: में बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभिंदु अधिकारी ने मरकज में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर कोलकाता में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में मीडिया को आज ये इत्तला दी। जनाब अधिकारी ने कहा कि लोग भारत बांग्लादेश सरहद पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीनें दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें मुनसिफाना कीमत देकर मगरबी बंगाल की हुकूमत आम आदमी की जमीनें ले रही है और इन जमीनों को बीएसएफ के हवाले कर रही है। वजीर आला ने कहा कि जमीन की मुंतकली का ये अमल जारी है और इस प्रोजेक्ट को कौमी सलामती का एक मामला करार दिया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सरहदों पर बाड़ लगाने का काम इंतहाई अहमियत का हामिल है ताकि दरअंदाजी को कतई रोका जा सके।
1: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
0: मरकजी काबीना के सेक्रेटरी डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह के साथ एक मीटिंग में नीट के दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। जायजे के दौरान जनाब सोमनाथन ने तमाम मुतालिका तरफेन के दरमियान गहरे तालमेल के साथ बिला रुकावट, शफाफ और महफूज दोबारा इम्तिहान मुनक़िद किए जाने को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत, रियासती सरकारें और जिला इंतजामिया नीट के दोबारा इम्तिहान को बिला रुकावट मुनक़िद किए जाने को यकीनी बनाने की गरज से गहरे तालमेल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे कबल इस माह के आगाज में जनाब सोमनाथन मरकजी हुकूमत और मुतालिका एजेंसियों के सेक्रेटरियों के साथ इंतजामात का जायजा ले चुके हैं। इधर एनटीए ने इस माह की 21 तारीख को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान की विंडो में 15 मिनट का इजाफा किया है और इसे 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये आकाशवाणी है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शाज डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और खलीज उमान में भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाजों पर अमरीकी बहरी फोर्सेस के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। इन हमलों के नतीजे में पहले ही 3 भारतीय बाशिंदों की जानें तलब हो चुकी हैं। अमरीकी एलची को नई दिल्ली में वजारत खारजा ने अमरीकी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी ने तलब किया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि उसने एक बार फिर शहरी जहाजरानी के खिलाफ इंतहाई मुहलिक कुव्वत के इस्तेमाल पर अपनी गहरी तश्वीश से उन्हें वाकिफ कराया। वजारत ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई नाकाबिले कबूल है और एक मुश्किल वक्त में एक हसास इलाके में बैन अवी सरहदों में कारोबार के तहफ़ सलामती और इस्तेहकाम को कमजोर करती है। अमरीका के शाज डिफियर से दरख्वास्त की गई कि वह अपने हुक्काम को भारत की सख्त तश्वीश से वाकिफ कराएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि खित्ते में कार्रवाई में शामिल अमरीकी फोर्सेज शहरियों की जिंदगी के नुकसान की रोकथाम के लिए सभी जरूरी इकदाम करें। यह दूसरी मरतबा है कि अमरीकी एलची को वजारत में तलब किया गया। भारत के 3 मल्लाह जिनके बारे में इब्तदाई इत्तलात मिली थी कि वो लापता हैं, तस्दीक हो गई है कि वो एक हमले में अपनी जानें गंवा बैठे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान पर इल्जाम लगाया कि वह आबनाए हुरमुस से रवाना होने वाले भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमले कर रहा है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब ट्रंप ने इन वाकयात को कतई तौर पर नाकाबिले कबूल करार दिया। उनका यह बयान भारत की जानिब से अमरीका के शॉज डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किए जाने और खलीज उमान में भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाजों पर अमरीकी बहरी फौजों के जारी हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज कराने के बाद सामने आया है। इससे कबल दिन में ईरान ने कमर्शल जहाजों पर अमरीकी हमलों की मजम्मत की थी और इन्हें हलाकत खेज करार दिया था और वॉशिंगटन पर लाकानूनियत पर मबनी कार्रवाई में मुलविस होने का इल्जाम लगाया था जिससे आलमी अमन और समुद्री सरहद की सलामती को खतरा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भारतीय बाशिंदों की हलाकत पर ताजियत का इजहार किया और बैन अवी बिरादरी से जोर देकर कहा कि इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाए। मगरबी एशिया में लड़ाई को रोकने की सिफारती कोशिशें आज भी नतीजा खेज साबित नहीं हुई। ईरान ने ऐलान किया कि उसने अमरीका के साथ किसी मुजवजा माहदे पर अभी तक कोई कतई फैसला नहीं किया है। यह बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की बराह रास्त तरदीद है जिसमें उन्होंने इससे पहले कहा था कि कुछ ही दिन में एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि किसी कतई माहदे के बारे में या दस्तखत किए जाने की कोई तकरीब मुनक़िद होने के बारे में बात करना कबल अज़ वक्त है। अलबत्ता उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मुज़ाकरात के ज्यादातर मतन को मुसव्वदे की शक्ल दे दी गई है। मजीद तफसील

0: खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपीय। श्रोताओ, एक ऐसा खेल जो पूरे विश्व में काफी लोकप्रिय है, इसमें दो खिलाड़ी एक दूसरे पर मुक्कों से प्रहार कर अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। इस खेल में फिजिकली और मेंटली फिट होना बेहद जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉक्सिंग की। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच नेहा कश्यप। आपने खेल जगत में अपनी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा के बल पर एक अलग पहचान बनाई है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर आपका।
0: नेहा जी, सबसे पहले आप अपना संक्षेप में परिचय हमारे श्रोताओं को दे, और आपके मन में कब ऐसा ख्याल आया कि आपको बॉक्सिंग के क्षेत्र में ही करियर बनाना चाहिए या बॉक्सिंग जैसे चुनौतीपूर्ण खेल को ही आपको अपनाना चाहिए?
1: जी बिल्कुल, मेरा नाम नेहा कश्यप है और मैं बॉक्सिंग कोच हूँ टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में। मैं काफी छोटी थी और हम चार बहनें हैं, जिसमें कि मुझे लगता है कि उस टाइम पे मैं काफी उद्यमी रही थी और काफी नॉटी चाइल्ड थी मैं। बहुत ज्यादा शरारते करना, फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा इन्वॉल्व रहना। तो उस समय मेरे जो ब्रदर हैं मिस्टर रोशनलाल जी, उन्हें लगा कि इनको स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, ये कुछ बेहतर कर सकती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, और वो मेरे भाई थे और काफ़ी अच्छे, खुद भी वो प्लेयर रहे हैं, अभी वो इंटरनेशनल कोच हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं खेल से जुड़ी और आज तक मैं उस चीज़ को जारी कर पा रही हूँ।
0: अब हम आपसे बात करते हैं आपके सफर की, जब आपने इस खेल को चुना और यहाँ तक जब आप पहुंची है एज ए कोच के तौर पे, तो यह सफर आपका कितना चुनौतीपूर्ण रहा?
1: जिस टाइम पे मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था और मैं बॉक्सिंग से जुड़ी थी, उस समय में गर्ल्स को लेकर, महिलाओं को लेकर इतनी कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और अगर लड़कियां कुछ ऐसा करती भी थी कि फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी हुई, तो वो कुछ ही चीज़ें थी, जैसे कि भरतनाट्यम हो गया, कोई इंडियन क्लासिकल फोक या ऐसे कोई डांस हो, तो इससे ज़्यादा वो अपने लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाती थी अगर वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी में करती भी थी तो। और उस समय में स्पोर्ट्स से जुड़ना तो बिल्कुल ऐसा हो जाता था, जो सोच थी लोगों की, कि ये तो हमारे लिए समय की बर्बादी है
0: जी।
1: अगर आपको कुछ करना है तो आप पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, कुछ बड़े लेवल पे करिए थ्रू एजुकेशन। तो उस टाइम पर ये काफी मुश्किल रहा था, क्योंकि जो भी इंसान बात करता था या सोचता था, तो उसे ऐसा लगता था कि ये तो समय खराब कर रहे हैं अपना, ये जो बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं जो भी स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं छोटी, उस टाइम पे अपना समय बर्बाद कर रही हैं और ये उन्हें आगे समझ में आएगा कि उन्होंने कितना अपना समय खराब कर दिया है। तो इस तरीके से थोड़ी कठिनाइयां तो आई थी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने, मेरे भाई ने, सबने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और उन्होंने यही कहा कि आप जो कर रहे हैं उसको पूरी लगन से और मेहनत से करिए, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर आप किसी चीज को ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप उसमें सफल ना हो। तो ये चीज काफी अच्छी रही मेरे लिए।
0: निश्चित तौर पर जो सीख मिली आपको आपके घर वालों से, वो आपके काम आई और आज आप इस मुकाम पर हैं कि आप युवाओं को प्रशिक्षण दे रही है। नेहा जी, आपने जब बॉक्सिंग ज्वाइन की तो उस समय आप कितने वर्ष की थी?
1: जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी तब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी और तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसी खेल से जुड़ी रहूंगी। तब मेरा मानना ये था कि अभी मुझे सिर्फ मेहनत करनी है और जैसे कि हम किसी अंधेरे में टॉर्च लेके जा रहे होते हैं और हमें स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बहुत रास्ता दिखता है, उस तरीके से सिर्फ मैंने एक सोच रखी थी कि बस धीरे धीरे चलते रहेंगे और जहां तक हम जा सकते हैं, जहां तक हमें वो रोशनी ले जाए, वहां तक जाने की हम कोशिश करेंगे।
0: अब बात करते हैं आपके उपलब्धियों की, तो आपकी अभी तक की उपलब्धियों के बारे में हमें बताएं।
1: जब से मैंने खेलना शुरू किया, एज अ प्लेयर मेरा करियर बहुत ज्यादा नहीं रहा। मेरे नेशनल लेवल पर ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल है यूनिवर्सिटीज़ में और फेडरेशन कप, इन सब में मेरे मेडल रहे हैं। लेकिन मुझे इसके बाद इंजरी हो गई थी थोड़ा स्पाइन की, तो मुझे रोकना पड़ा और जब तक वो रिकवर हुई, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे खेलने की जगह कोचिंग लाइन में आना चाहिए और एक गुरु की भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि शुरू से जो मैंने चीज़ें फेस करी, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, तो मैं नहीं चाहती थी कि अब आने वाली जनरेशन उसको फेस करे। तो मुझे लगा कि अब मुझे इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए लाइन को और एज अ कोचिंग थोड़ा एक्सपीरियंस देना चाहिए लोगों को।
0: नेहा जी, एक बॉक्सिंग कोच के रूप में खिलाड़ियों को तैयार करने में किन बातों पर सबसे अधिक ध्यान आपको देना पड़ता है?
1: होता यह है कि जो एक कोच रहता है, उसके दिमाग में वो सारी चीजें रहती हैं जो उसे काम करवाना है बच्चों से, और बच्चों की भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, बच्चे काफी ज्यादा रहते हैं और अलग अलग स्तर के रहते हैं, जैसे कि कोई नेशनल प्लेयर है तो कोई स्टेट लेवल का है, कोई इंटरनेशनल है, और किसी का मेडल है किसी का नहीं है। अब इसके बाद बच्चा 6 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में है, तो हर तरीके का बच्चा और हर तरीके का उसका बॉक्सिंग का एक्सपीरियंस, उसका करियर, इन सबके साथ डील करने के लिए कोच एक ही है, और कोच का मेंटल लेवल बिल्कुल सटीक है, उसे पता है कि मुझे क्या काम कराना है, कैसे कराना है। लेकिन चुनौती तब आती है, चैलेंजेस तब फेस करने पड़ते हैं जब वही सेम चीज बच्चों के दिमाग में ना हो, क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं, उनका अलग अलग दिमाग है, उनकी अलग अलग सोच है। अगर आज मैंने शाम को सोचा कि कल सुबह मैं बच्चों से 8 किलोमीटर रनिंग करवाऊंगी, तो हो सकता है कि उसके लिए मैं मेंटली फिट हूं लेकिन बच्चा नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: तो सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि आज ही मुझे आज का काम भी करवाना है और आज ही मुझे उनको कल के लिए मेंटली प्रिपेयर भी करना,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। क्योंकि सिर्फ बोल देना, कह देना, बच्चों ने सुन लिया, उस काम को कर लिया और बस वो हो गया, उससे कभी भी रिजल्ट नहीं आते हैं जब तक वो अंदर से भूख ना हो कि नहीं वो करना है और बहुत अच्छे स्तर पर करना है, उस लेवल पर करना है कि अब इसमें कुछ ना कुछ बेहतर होगा, जो कल हमने किया था उससे अच्छा होगा, आज 2 मुक्के हमने 1 सेकंड में मारे थे तो कल हमें 1 सेकंड में 5 मुक्के मारने हैं। तो ये जब तक अंदर से भूख नहीं आएगी, जब तक अंदर से चीजें उत्पन्न नहीं होगी बच्चों के अंदर की नहीं हमें कुछ करना है, तब तक वो उस चीज में अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं सकते। तो सबसे बड़ी चुनौती यही आती है कि हमारे साथ साथ हमें हमारे जो प्लेयर्स है उनके मेंटल लेवल को भी हमेशा सही रखना है, हेल्दी रखना है और बनाए रखना है कि हमें काम किस तरीके से करना है और किस लेवल पर करना है।
0: जी जी जी। तो आप जो बच्चे हैं उनको किस तरह से मोटिवेट करती है?
1: एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं ना, हम उनको आज अगर मोटिवेट करेंगे तो वो कल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेंटली डाउन जाएंगे ही जाएंगे।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो मैं उनको सबसे पहले ये बोलती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, बस करना है, आपको सिर्फ उस काम को करना है और जितना हो सकता है आप उसमें मन लगाएं। और दूसरी चीज कि जैसे जैसे आप इसी काम को करते जाते हैं और पूरा फोकस होकर करते हैं, बिना किसी मतलब परेशान हुए चिढ़ते हुए, अगर आप उसको संयम से उस काम को करते हैं तो धीरे धीरे आप खुद उसमें निपुणता हासिल करने लगते हैं। और एक्चुअली क्या है कि मेरे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको मैं सबको मेडिटेशन करवाती हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, ताकि कहीं पर भी उनके साथ आगे चल के कहीं जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना लगे, उनको उतना ज्यादा परेशान ना करें। और इस तरीके से हम आपस में एक एज अ टीम वर्क हम काम कर रहे हैं अभी।
0: नेहा जी, फिजिकली फिट होना तो जरूरी है ही बॉक्सिंग में, और साथ ही मेंटली फिट होना भी जरूरी। जैसे आपने कहा मेंटली फिट रखने के लिए आप उनको मेडिटेशन कराती है, फिजिकल फिट रखने के लिए उनको कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेस है जो करना आवश्यक है और वो करना जरूरी है हर प्लेयर के लिए?
1: एक्चुअली यहाँ बात सिर्फ प्लेयर की नहीं है, कोई भी पर्सन, कोई भी, चाहे वो किसी भी एज का क्यों ना हो, सभी के लिए फिजिकल फिटनेस और मेंटली हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की, तो कुछ ना करे कोई भी, चाहे वो प्लेयर हो, हेल्दी प्लेयर हो या वो इंजर्ड प्लेयर हो, वो छोटी छोटी कुछ चीजें, या वो नॉन प्लेयर पर्सन हो, वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखे, जैसे कि अपनी एज के हिसाब से अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है या कोई बुजुर्ग है तो वो वॉकिंग हमेशा करें। आप छोटी छोटी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि किराना तक जाना है तो आप स्कूटी से ना जाएं, बाय वॉक जाएं। अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो आप थोड़ा सा सैर बाहर नहीं कर पा रहे तो अपनी छत पर कर लें, थोड़ा सीढ़ियां चढ़ लें, ये सब चीजें। और जो प्लेयर हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी फिजिकल एक्टिविटी को छोड़ना नहीं है, मतलब कि ऐसा वो दिन ना आए जिस दिन हमें लगे कि नहीं भाई आज तो बिस्तर से नहीं उठना है, आज तो मन नहीं कर रहा, आज तो सोना है। बस वो परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। आपको बिस्तर से उठना है, आपको थोड़ा सा दौड़ना है, आपने 15 मिनट 20 मिनट जॉगिंग कर ली, थोड़ा सा आप स्विमिंग करने चले गए, या कभी आपने साइकिलिंग कर ली, आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना ही। अगर कोई बॉक्सर है उसे फुटबॉल वॉलीबॉल खेलना पसंद है तो थोड़ी देर जाके वो खेल आए, मतलब ये वो कंडीशन है जहां पर आपका मन नहीं है या फिर आपको इंजरी है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो भी मैं कहूंगी कि आप ये छोटी छोटी चीजों को करें। जैसे कि हम हमेशा दिन में 3 बार खाना खाते हैं, पर सपोज कभी हमारा मन नहीं है तो हम हल्का फुल्का कोई फ्रूट ले लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मतलब हमें किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देना है, हमें उसे चलते रहने देना। और सेम यही मेंटल हेल्थ के लिए है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो पूरा हमारी लाइफ को, हमारे अपीयरेंस को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे बिहेवियर को बताती है कि हम कैसे हैं, और वो ही उसको क्रिएट करती है एक्चुअल में। अगर हम मेंटली फिट रहेंगे, थोड़े काम रहेंगे, तो हम हर सिचुएशन को डील कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उनके जीवन में परेशानियां नहीं आएगी, उनको चैलेंजेस नहीं होंगे। हाँ, बस ये है कि जो मेडिटेशन करते रहते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, अपने आप को थोड़ा शांत रख पाते हैं, उनके लिए वो परेशानियां उतनी बड़ी नहीं रहेंगी जितनी बाकी लोगों को लगती
0: है। जी बिल्कुल। नेहा जी, एक कोच को किस प्रकार अपने आप को अपग्रेड करना होता है वक्त के साथ?
1: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जितने भी कोचेस हैं, वो चाहे रीसेंट कोच बने हों या वो पुराने कोच रहे, उनको फिजिकल एक्टिविटी खुद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो खुद फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो होता ये है कि सरकार जो है वो समय समय पर 6 महीने साल भर में कोई ना कोई कोर्सेज निकालते रहते हैं, जो कि या तो SNC के, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के रहते हैं हमारी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े, या फिर साइकोलॉजी के रहते हैं हमारे मानसिक रूप से जुड़े हुए। तो ऐसे वो कोर्सेज निकालते रहते हैं, पर वो आप कोर्सेज करने चले जाएं और आप फिट ही नहीं हैं, तो आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं डेली वर्कआउट कर रही हूँ, मैं डेडलिफ्ट उठा रही हूँ 60-70 किलो का, या मैं कोई डंबल उठा रही हूँ 15-17 किलो का, और फिर मैं कुछ दिनों बाद कोर्स के लिए चली जाऊं और वहां मुझे कहा जाए कि आपको डेडलिफ्ट करना है इस तरीके से, अभी तक आप जो करते थे वो टेक्निक पुरानी थी, अब आपको इस टेक्निक से करना है, अगर वो बताएं तो मैं उसको कर तो पाऊं। अब अगर मैं खुद ही नहीं कर रही थी, तो मैं उसको एक्सपीरियंस कैसे करूंगी, मैं उसे सीखूंगी कैसे? सिर्फ देखकर मैं ये समझ पाऊंगी कि हाँ ये ठीक है, वो गलत है, लेकिन खुद से एक्सपीरियंस करना एक एक मसल को, और जब मैं वो लोड ले रही हूं, तो उस पेन को, उस मेंटल स्ट्रेंथ को, कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं नहीं कर सकती हूँ, इन सब चीजों को अगर मुझे एक्सपीरियंस करना है, तो एक कोच को खुद हमेशा फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और समय समय पर जो हमारी सरकार है वो कोई ना कोई कोर्सेज निकालती रहती हैं, तो तरीके से आप खुद को अपग्रेड रख सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके अनुसार बॉक्सिंग महिलाओं के आत्मविश्वास में कैसे मदद करता
1: है? बॉक्सिंग जो है वो एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, और ये जो हमारा बॉक्सिंग गेम है वो आपको सिर्फ शारीरिक रूप से ही स्ट्रांग नहीं बनाता है, इवन मेंटली भी आपको स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं छोटी थी, तो मैं छोटी छोटी बातों पे झगड़ने लगती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन जब से मेरी पूरी एनर्जी स्पोर्ट्स में गई है, इस गेम में गई है, इस फिजिकल एक्टिविटी में गई है, तब से मेरा मन बहुत शांत हो गया है, और मैं छोटी छोटी बातों पे परेशान एकदम से गुस्सा नहीं दिखाती हूँ। मैं अपना सारा गुस्सा, जो मेरा सारा एग्रेशन है, वो सारा का सारा वो खेलते हुए ही निकल जाता था। तो बाकी जगहों पे मैं काफी काम और फ्री फील करती थी। और इसी तरीके से जितनी भी जनरेशन है, मुझे लगता है कि सभी को कोई ना कोई स्पोर्ट्स करना चाहिए, किसी ना किसी खेल से जुड़े रहना चाहिए, ताकि अगर आप थोड़े एग्रेसिव हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो वो आपका सारा का सारा जो एनर्जी है वहाँ पर निकल जाए, और आप बेहतर सोचने समझने की क्षमता रखें।
0: जी नेहा जी, युवाओं को फिट और अनुशासित रखने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेगी?
1: मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि आप जिस भी उम्र के हों, या जो भी काम कर रहे हैं, अच्छी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहा है, तो कोई डांस से जुड़ा हुआ है, कोई सिंगिंग से जुड़ा हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक बेहतर इंसान बनना है मानसिक रूप पर और शारीरिक रूप पर, तो आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। कुछ ना करें तो जॉगिंग जरूर करें, थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करें, 5 मिनट के लिए ही सही, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लें, साइकिलिंग कर लें, और रोजमर्रा की जो आपके काम रहते हैं उनको बाय वॉक करें, जितना भी आप कर सकते हैं, जो आसपास के 400-800 मीटर

0: के दायरे में जितने भी आपकी काम आते हैं, तो वो सारे आप पैदल जाकर ही करें, उसके लिए आप स्कूटी या बाइक ना उठाएं,
1: जी
0: तो वो काफी इफेक्टिव रहेगा आपके आगे की हेल्थ के लिए।
1: जी नेहा जी, निश्चित ही आपसे बातचीत करने के बाद हमें यह महसूस हुआ, पहले के समय में हम कहते थे कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही कोई अपना भविष्य सवार सकता है, पर वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर खेलों में भी एक अच्छा करियर विकल्प है। नेहा जी, आप हमारे स्टूडियोज में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।

0: अभी आपने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच नेहा कश्यप से की गई यह बातचीत सुनी। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
1: खेल जगत में अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग कोच नेहा कश्यप से मनीष गजभिये की बातचीत। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में है। फिल्म का नाम है यंगिस्तान।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
1: जीत गांगुली ने इस गीत की धुन बनाई है। गीत लिखा कौशर मुनीर ने।

अगला गीत लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, जैम ने इसका संगीत तैयार किया है। रईस फिल्म का ये गाना है जिसे गाया अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत अरिजीत सिंह का गाया हुआ है। रश्मि सिंह ने इस गीत को लिखा, संगीत जीत गांगुली का। फिल्म है सिटी लाइट्स।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाए सिटी लाइट फिल्म के गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। श्रोताओं, पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वयंवर फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, गुलजार के बोल, संगीत राजेश रोशन का। इस गीत को सुनना चाहा है कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूरा श्रीमाली ने। गौतम नगर जिला नांदेड़ से ये पत्र आया प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले का। छुआ जो मैंने एक फूल गुलाब का, सारे बदन से तेरी खुशबू आने लगी।

अगला गीत सुनना चाहा है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तान्या ने। इन श्रोताओं की पसंद है सुहागन फिल्म का गीत जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने। संगीत तैयार किया मदन मोहन ने, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की।

इन श्रोताओं ने सुनना चाहा है कामचोर फिल्म का गीत, जिसे आवाजें दें किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। इंदिवर के बोल हैं, संगीत राजेश रोशन ने।

अगला गीत बदलते रिश्ते फिल्म से लिया है, जिसे गाया लता मंगेशकर महेंद्र कपूर ने। अनजान के बोलों को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहा घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया ने। मेरे दिल की धड़कन अक्सर बढ़ जाती है, मेरे दिल की धड़कन अक्सर बढ़ जाती है जब तेरी खुशबू इन हवाओं से मिलकर मुझे छू जाती है।

अगला गीत सुनना चाहा है सरोचोक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम आयशा खान हदिया असमा सालिया शोएब खान राव भाई शाहिद भाई गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। इन श्रोताओं की पसंद है अमानत फिल्म का गीत जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने। दूरी ऐसी कि मिटती ही नहीं, मैं तेरे पास भी आऊँ तो कहाँ तक आऊँ।

कार्यक्रम का अंतिम गीत जूली फिल्म से लिया है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, संगीत तैयार किया राजेश रोशन ने। सुना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। हर मोड़ पर नई शुरुआत हो सकती है, दूर रहकर भी बात हो सकती है। माना कि आपसे दूर है बहुत, लेकिन आंखें बंद करके तो मुलाकात हो सकती है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए जूली फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए अब सुनिए सोनू मजूमदार का बांसुरी पर बजाया राग सरस्वती।

0: अभी आप सुन रहे थे रोनू मजूमदार का बांसुरी पर बजाया राग सरस्वती। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, 11:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across